0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM
1: 90.4 शान रिसालत मौला जाने देखे ताकत ना गे मालिक जो महबूब मोहम्मद होने के खाते

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।
4: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارا رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: में ते अजा तई सही ना थी मतन में अजा तब्दीली मुमकिन है। लबनान समेत सभी महाजन से जंग के खात्मे जो ऐलान निकाबूरी मुआदे तहत अमरीकी नाकाबंदी जो खात्मो अपने हुरमस खोलण अबूरी मुआदे जो हिस्सो आन। ईरान के परी वजीर अब्बास इराकची से वायद इसराइल जड़ा दुश्मन ईरान अमरीका मुआदे के खिलाफ आन। अमरीका जो धमकियों बंद थन घुर्जन ईरान दबाव आदो न झुको असां तलवार हमेशा अपने हुरमस लटकल रही। लबनान में जंग के खात्मे जो मतलब इसराइल जो कब्जो कल इलाक में निकरण है। अबूरी मुआदो पे कदम है जैसे उन अमल न कर तो एटमी प्रोग्राम से भी गालू न थन्दूं।

एनएफटी मां सिधियूं मुंतकिलियूं अकेली पंजाब खां टिन सूबनि खां वधीक रक़म मिलंदी। विर्थ जो की पोल मां सूबनि खे मजमूई तौर ते 88 खरब 48 अरब रूपया ॾियण जी तजवीज़। रुगो पंजाब खे सिधी मुंतकिली जी मद में 44 खरब रूपया मिलंदा। सिंध खे रुगो 22 खरब 7 अरब 18 करोड़ ॾियण जी तजवीज़। केपी खे 14 खरब 43 अरब 34 करोड़ 7 लख ऐं बलोचिस्तान खे 7 खरब 95 अरब 13 करोड़ 40 लख रूपया मिलंदा। बजट में विर्थ जोगी पोल जी रक़म हलंदड़ साल जी भेट में 6 खरब 46 अरब 7-8 करोड़ 80 लख रूपया घटि आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। जीए एफएम
3: 90.4। तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: कलमा पढ़ो ते हिक भेरा बीहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों काफर थीवन ए केड़ी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अर्दा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तू पहले मैं वो समझण न वन मुंजा दुश्मन तो के होते तो जा वेरी मारे वेजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खाना थो रजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पोंदो मां त घणो पहले पान खे रोकिया पर छा करिया मुझे दिल न थी रहे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंडीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

एनएफसी मां सिधियूं मुंतकिलियूं अकेले पंजाब खे 3 सूबनि खां वधीक रक़म मिलंदी। विर्च जोगी पोल सूबनि मां मजमूई तौर ते 88 खरब 48 अरब रूपया ॾियण जी तजवीज़। रुगो पंजाब खे सिधी मुंतकिली जी मद में 44 खरब रूपया मिलंदा। सिंध खे रुगो 22 खरब 70 अरब 18 करोड़ ॾियण जी तजवीज़। केपी खे 14 खरब 43 अरब 64 करोड़ 60 लख ऐं बलूचिस्तान खे 7 खरब 95 अरब 13 करोड़ 40 लख रूपया मिलंदा। बजट में विच जोगी पोल जी रक़म हलंदड़ साल जे बजट में 6 खरब 46 अरब 60 करोड़ 80 लख रूपया घटि आहे।

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: आई हाँ गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
2: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हाँ 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: Achla.
1: It's 11:15 a.m.
2: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din, har peher, zindagi ki leher, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz. Apna shahar, apna ghar, Matli, aur Matli ki awaaz. GFM 90.4.
4: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ईरान अमेरिका खिलाफ़ जंग जो फातिहा आहे मक़ामती यादाश्तामे अञा ताईं सही नाहे थी मतन में अञा बि तब्दीली मुमकिन आहे लबनान समेत सभिनी महाज़नि ते जंग जे ख़ात्मे जो ऐलान अबूरी मुआदे तहत थींदो अमरीकी नाकाबंदी जो ख़ात्मो ऐं अमन हुरमस करण अबूरी मुआदे जो हिसो आहिनि ईरान जे परे वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त इसराइल जहिड़ा दुश्मन ईरान अमरीका मुआदे जे ख़िलाफ़ आहिनि अमरीका जूं धमकियूं बंदि थियणु घुर्जनि ईरान दबाउ आॾो न झुकंदो असांजी तलवार हमेशा अबन हुरमस लटकियल रहंदी लबनान में जंग जे ख़ात्मे जो मतिलबु इसराइल जो कब्ज़ो कयल इलाइक़नि मां निकिरणु आहे अबूरी मुआदो पहिरियों क़दम आहे जेकॾहिं उन ते अमल न कयो वियो त एटमी प्रोग्राम ते बि ॻाल्हियूं न थींदियूं।

करमपुर में धाड़ेलन जो केटीएन न्यूज़ रिपोर्टर के घर से हमलो संदस सोट कतल धाड़ेलन केटीएन न्यूज़ रिपोर्टर अली जाफरी के घर से हमलो करे सन सोट शाह मुराद जाफरी के कतल कर छोड़ो। फायरिंग में रिजब अली जाफरी जख्मी, इतला बावजूद पुलिस वाके वारे हंध न पहुंची।

घर में बेज़ुबान जानवरन सां ज़ुल्म में घटताई न थी कलोई में कुआड़ियुनि जा वार करे ज़ख़्मी करे छॾियो घोट बातू मोरामियन जदल जवाबदारनि कुआड़ियुनि जा वार करे बेज़ुबान ॾाची जूं जंगू भरी छॾियूं ॾाची जे मालिक अशरफ नेड़ियो पारां जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मेहमान नवाज
1: ॾाढो सुठो
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।
3: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हां 2315525786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।

आहे। रिक्विडक्ट मिसाल वठो, मुआदे खे बि पढ़ी वठो। बलोचिस्तान जी अवाम जो रिक्विडक्ट में शेयर सभिनी जे साम्हूं आहे। महमूद खान कादर चमन शाह जो बि मुतालबो न कयो हो। कानून लागू इदारा मुल्क जे अमन लाइ ॾींहुं राति कम कनि पिया। सदन ख़िदमतुनि ऐं क़ुर्बानीनि जो एतराफ़ ऐं एहतराम थियणु घुर्जे। सिक्योरिटी फोर्सेज जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। 3 ॾींहनि दौरान फोर्सेज जे ऑपरेशन दौरान मारिजी विया दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 48 थी वियो। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज गुजरात इलाइक़े ते मीरान शाह ऐं भरपासे में ऑपरेशन कया, जंहिं दौरान वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। 72 कलाकनि दौरान ऑपरेशन नतीजे में दहशतगर्द 4 अहम कमांडर समेत 48 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। इलाइक़े में क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी रहंदो। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेज जी बाखाण। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं कार्रवायूं जारी रखण वारे अज़म जो वरझाओ। ईरान अमरीका सां शुरूआती मुआदे ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास सिराग़ची चयो आहे त अमरीका सां ॾींहं ॿिनि में मुआदो थी सघे थो। मुआदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशा जीअं अमन हुरमत ते लटकंदी रहंदी। ॿिनि सूबनि ते ॿधल मफ़ामती यादाश्त आहे, जंहिं ते ॿिनि महीननि ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। अमन हुरमत जो इंतज़ाम माज़ी खां मुख़्तलिफ़ हूंदो ऐं जंहिं बाबति तेहरान जो फ़ैसिलो हतमी आहे।

0: रंगवाणी भरसा बाड़ी उड़ी वगे फोत गोठ सुबह सात कोसो में सत साल बिस्मल शाड़ी उड़ी वगे फोत की वही गोठान पारा डॉक्टर जो टीमू मोकलण जो मुतालबो। आगड़ी खेरो में माटन वट घुम आयल बाड़ो गंदे नाले में किरी बुढ़ी फोत ओस्ता मोहम्मद वासी नव साल नवीद शेख गंदे नाले में किरी बुढ़ी फोत थी पो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हाँ बुड़ी 3315257786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन था, आपने एंजॉय कर रही थी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। और जनाब आपका प्रोग्राम है तो आपका होना प्रोग्राम में भी होता है, इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम पे की जाने बात है। तो आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो आप लोग आज में सवाल पूछना होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि बहुत से लोगों की ये आदत होती है ना कि वो खुद से बातें करते हैं,

ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और ये लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए और वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की बिल्कुल लाइव पोस्ट मिलेगी, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करते हैं। जनाब तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ, और दोस्तों को जरा मेंशन करते जाइए, सबको पता चलना चाहिए कि मार्केट में कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिनका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। जाहिर सी बात है, तो आप भी जो है ना वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो है ना वो इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं तो वक्त से पहले आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा मत किया करिए अपने साथ जुल्म, ये भाई सरासर जुल्म है खुद के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, खूबसूरती को जो है ना वो वैल्यू दिया करें, और अपने आप को जो है ना हमेशा आगे रखा करें, और अपने चेहरे का खास ख्याल रखा करें। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका क्या तरीकेकार है और कौन से प्रोडक्ट है, ये सारी बातें आप लोगों को इस प्रोग्राम में पता चलती है। तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रोग्राम में फंड होता है, बातें होती हैं, गाने होते हैं, मजे करते हैं। तो जी आप हमारे साथ मौजूद रहिए, और मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं क्या आप भी वो हैं जो खुद से बातें करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से। रुचि के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मसरूर अहमद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कराची से मसरूर अहमद कहते हैं आरजे मुस्कान जी फायजा का सॉन्ग सुनाइएगा। ओके जी, मैं सुनाने की कोशिश करूंगी। आदिल हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, और कहते हैं बेहतरीन पलांद, चुप करे अगते वधण, पाण के बेहतर बनाइण ऐं सब कुछ अल्लाह ते छॾे ॾियण, मुनाफ़िक लाइ मौत बराबर आहे। बिल्कुल तमाम सही चयो आहे। उन खां अलावा हे जी फिरोज अली बिरोही हमारे साथ हेलो कहते सो गुड शो, थैंक यू। वफा मीर मुनवर हमारे साथ है, कहते हाय सिद्राबाद जी, हेलो वफा मीर मुनवर भाई, और ये हमारे साथ है गुड गुड गुड गुड, वालेकुम अस्सलाम गुड गुड कैसा नाम है भाई। अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और साहिद चांडी हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम। अदी की आयो अदी से आप हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं अच्छा प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, बहुत शुक्रिया जी, बस प्रोग्राम आप लोगों का अपना है, आपकी ये मोहब्बतें हैं, और बस आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। और जाकिर हुसैन कोरी हमारे साथ, जाकिर हुसैन कोरी भाई वालेकुम अस्सलाम। और हैं जी मौलाई मुजाहिद बोजदार और टूफ चूसल से, मौलाई मुजाहिद बोजदार वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं, आपने दुआएं दी हैं बहुत शुक्रिया उसके लिए। मीर बेवस हमारे साथ हैं, हेलो हाय, योर शो इज अमेजिंग इन वॉइस स्वीट, थैंक यू। भक्त अली सियाल हमारे साथ हैं, भक्त भाई आपको भी वेलकम करते हैं। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा खुश आयो, हाँ हाँ बिल्कुल प्री पाण आयो है पंध करे गर्मी में अच्छा कहते हैं किशोर भाई टॉपिक मेरा सबसे अच्छा और बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूँ, सबसे पहले मैं खुद से पूछता हूँ, बातें भी करता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, ये अच्छी बात है, खुद से बातें करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये जो आपके अंदर इंसान है ना ये क्या चाहता है, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो खुद से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये आज जो है ना पूरे प्रोग्राम में बातें हम करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको नंबर बताती हूँ, पूरे प्रोग्राम में नंबर बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और आप उस नंबर के ऊपर रابطہ करिए, और नंबर के ऊपर رابطہ करने के बाद जो है ना आप लोगों ने बता सकें कि आप कहाँ से प्रोग्राम सुनते हैं, किस एरिया में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, ताकि वो अवेलेबल करा सके। तो आप बस इस नंबर के ऊपर رابطہ किया करें, नंबर है जनाब 03151579-0595। ओके जनाब, सो नंबर ही 03-15-799-0595, जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप लगाएं और खूबसूरत हो जाएं, ठीक हो गया। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते हैं ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पर टाइम हुआ जाता है कि हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाएंगे, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आती है, आपका
ہمارا ساتھ پوری پوری 3 بجے تک کا ہے. اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ بھی خود سے باتیں کرتے ہیں, بتائیں تو ذرا, پتہ تو چلے. اور میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ बुड़ी 331 525 786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

बताना है. और व्हाइट एश प्योरी प्रोडक्ट्स में कितने सारे मजे के प्रोडक्ट्स आते हैं ये भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं. तो व्हाइट एश प्योरी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन प्योरी प्रोडक्ट्स हो, ये आप दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जा रहे हैं. बिल्कुल से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई केमिकल नहीं, बहुत लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है जनाब इन प्रोडक्ट्स को. और आप लोगों की स्किन के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं प्रोडक्ट्स, तो आप इस्तेमाल करके देखिए और अपने एरिया में अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03159905. ओके जी, पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ, जो है ना हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और जनाब किस प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक प्रोग्राम पहुँचाया जा रहा है. ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर. वालेकुम अस्सलाम. कहते बाजी व्हाइट एश प्योरी क्रीम नाइस है, सॉन्ग सुनाए कोई भी, चले जी बिल्कुल कोई भी गाना आपको सुनाते हैं. बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं. और उसके अलावा हमारे साथ हैं आरजे सिद्रा. आपका 2 घंटे वाला शो हमारे तमाम गमों, दर्दों और तकलीफों और परेशानियों को मिटा देता है. लाड़कना से इमरान अली बिरोही भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया. ऐसे मैसेजेस देखती हूँ तो मुझे एनर्जी मिल जाती है. मैं जो यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये किसी के काम आ रहा है. तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतें हैं. और गोश मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते तमाम जो शोबिरी नाई साहे सलाम तमाम के. वालेकुम असलम प्यारा भा तमाम के. और इरम कहती है मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सोने लाइ ताड़ियूं थी वजन, सोने लाइ ताड़ियूं वजायो बाबा, छो तो सोनो हाने सोनो थी वो है, सोनो सोनो छो थो है, छो तो सोनो जो इस्तेमाल करें तो व्हाइट एश प्योरी प्रोडक्ट्स. सो तुम भी व्हाइट एश प्योरी प्रोडक्ट्स लगाए तो भी सोना सोना थी वो. और ये हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम आरजे डियर सिद्रा. ए बी रिंद फ्रॉम नवाबशाह, मैं खुद से तो बातें नहीं करता लेकिन नींद में रात को बोलने की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से मुझे सुबह का चाय और नाश्ता होटल पे करना पड़ता है. क्या मतलब, आप घर वालों को कुछ उल्टा सीधा बोल देते. चले हाँ, ये जो बीमारी है ये कह सकते हैं कि बहुत जो है ना ये अजीब सी बीमारी है. और ये हमारे साथ हैं कौसर निसा, तेरी जन्नत अच्छा ये पता नहीं क्या लिखा है तुमने, मैं ठीक देखती हूँ मुझे मिल जाएगा ये गाना तो आपके लिए लगा देंगे ठीक है. और ये हमारे साथ मौजूद है सलाम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल है तमाजा खुश आयो अदी ईद का पो यको अमाजो शो सक्रेंट एफएम में नशर न थियो अज हले पयो, वडे शौक सा बुधू पया तवां जो प्रोग्राम, लाडो इंतजार हुयो, सॉन्ग जरूर प्ले कजो. सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अलीगुल जमाली, विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली, रशफी आबाद नवाब शाह, प्लीज प्ले सरमन सिंधी, तो सवाद नी है दुखियो सिद्रा. अच्छा चले ठीक है, गानो चयो है सो मोहब्बतूं प्यारे भांजो हलाईंदासीं गानो तवां जे लाइ. और ये कहते इमरान भाई टॉपिक बाजी, हम ख्वाब में बात करते हैं अपने आप से, ख्वाब में बात करते हैं ये कैसे, देखें किस तरह के लोग हमारी दुनिया में पाए जाते हैं वो तो हमें तभी पता चलता है जब मैं आप लोगों से थोड़ी अजीबोगरीब से सवाल पूछ लेती हूँ, समझ रहे. चलिए आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी से, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम जिक्र करें तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानें तो ये आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बात होती है, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं. और हर तरह से मुराद यही कि भाई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को निराश नहीं करेंगे. आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट लेकर हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को फेयरनेस क्रीम मिल रही है, नाइट क्रीम मिल रही है, एक्ने ट्यूब मिल रहा है, सोप मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल साशी मिल रहा है, और जो ना वो लोशंस भी मिल रहे हैं. तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों ने. और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो है ना अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि जो लोग अक्सर ये मुझे कहते हैं कि असा तो ही प्रोडक्ट ना लगाईंदा, जिको असा लगाईंदा वो तो आ ही ना बाजी तुम, तो असा वटाने सब प्रोडक्ट अव तक
कोई भी बहानो न बनाए डींदा सी ऐ तवा के बिल्कुल चवंदा सी त बाबा अगर तवा जे लाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जा अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल आइन त तवा उनन मा फायदो हासिल करियो और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अगर वाइट एज ब्यूटी क्रीम की बात की जाए तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की स्किन को फ्रेश रखती है, फेयर बनाती है, आपके चेहरे पर जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाते हैं क्योंकि वाइट एज ब्यूटी क्रीम के अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है और एलोवेरा मौजूद है। ये इतने मजे के प्रोडक्ट्स हैं ना कि जब आप इस्तेमाल करेंगे वाइट एज ब्यूटी क्रीम तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। उसी के साथ साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ अगर आप कोई भी अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइट एज ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और जना वाइट एज ब्यूटी सोप जो है ये भी एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है। उसके अलावा अगर आप सोप नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाने वाले इंसान है, तो बिल्कुल जी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए फेस वॉश भी अवेलेबल है और फेस वॉश जो है वो विटामिन सी से तैयार किया गया है। बिल्कुल जी विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। तो अगर आप वाइट एज का फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम लगाइए। और साथ साथ अगर आप कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं तो भाई मेरे ख्याल में आप लोगों ने इतनी सारी फेयरनेस क्रीमें इस्तेमाल करी होगी, ट्राई करके देखी होगी, लेकिन जब आप वाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि भाई सारी चीजें इसकी आगे फेल हैं, सारी चीजें इसकी आगे जीरो है, क्योंकि हमारा हीरो तो वाइट एज लवली क्रीम है। तो बिल्कुल जी वाइट एज लवली क्रीम आप इस्तेमाल करके देखिए जो कि 30 विटामिंस के कैप्सूल के साथ तैयार की गई है और इसके अंदर हर एक विटामिन मौजूद है और इसी के साथ साथ सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। और सनस्क्रीन ऐड करने का मकसद रीजन ये था कि आप लोगों की स्किन को ना सिर्फ खूबसूरती देंगे बल्कि आपकी स्किन को हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। बिल्कुल जी, ये जो आप काम करते हैं सूरज की ये जो खतरनाक से किरणें होती हैं आपकी स्किन के ऊपर आती हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उन चीजों से आपको बचाने के लिए वाइट एज लवली क्रीम जो है ना ये आ गई है मार्केट में। तो आप लोगों ने बस इस्तेमाल करनी है और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वाइट एज लवली क्रीम जो कि आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कयो, कुराड़ा मायू मर्द हर कोई लगाए वाइट एज लवली क्रीम जेका है ना वह तवाज ला सफा भली क्रीम अव। सो तवा सब लगाए जो ना अलावा जेके मानू एकनी की वजह से परेशान है, अगर आपके चेहरे पर भी एकनी दाने बहुत ज्यादा आ चुके हैं, दाने जाते नहीं है और आप परेशान हो चुके हैं, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब आपके लिए मौजूद है। अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए, आपके चेहरे के दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे के दानों के साथ साथ आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पर कोई जलने का निशान हो, कोई कटने का निशान हो, कोई बहुत पुराना जिद्दी निशान हो जो कि बचपन से आप लोगों के साथ मौजूद है, ये तमाम निशानात खत्म हो जाते हैं जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करने के तरीकेकार भी आप लोगों को बताती चलूं कि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगाते हैं तो इसको आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे यानी कि सोने से पहले इस्तेमाल कीजिएगा और इस्तेमाल करने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, चाहे आप सोप इस्तेमाल करें वाइट एज वालों का या फिर फेस वॉश इस्तेमाल करें, अच्छे से अपना जो चेहरा है ना वो क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए, अच्छे से अपने हाथों को क्लीन कीजिए, उसके बाद जहां जहां पर आपके एक्नी है, निशानात है या फिर जो आप चीजें रिमूव करना चाहते हैं वहां पर आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप सुकून से सो जाइए, काम तो यही करेगा, आपने तो सिर्फ रेस्ट करना है और उसके बाद सुबह उठकर आपने दोबारा से फेस वॉश कर लेना है, ठीक हो गया। और अगर आप वाइट एज लवली क्रीम लगाना चाहते तो इसको आप दिन में, रात में, किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये फेयरनेस क्रीम है तो इसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने से पहले फेस वॉश लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। और अगर आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। ओके जी, तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम रात के टाइम इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है, लगाने से पहले फेस वॉश लाजमी कीजिएगा और ना मिलने की सूरत में आपने डायल करना है 03-15-799-0595। जल्दी से ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो सके वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना दम है जनाब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। इस्तेमाल करते रहिए खूबसूरती को, वेलकम बोलिए क्योंकि अब आपकी खूबसूरती आपके हाथों में है।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, आप हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताते जाइए। और इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइएगा। और मौलाई मुजाहिद बोजदार क्या कहते हैं, सिडोजी टॉपिक, अल्लाह ना करे जो बंदा खुद से बातें करे वो नफ्सियाती मरीज होता है, क्या बोलती तू माँ, एग्री नहीं कहता आज नगाजा। और मीर बेवस हमारे साथ कहते चलो आओ किसी गाड़ी में बैठकर जर्द पत्तों से ढकी लंबी सड़क पर चाय पीते हैं, आओ जिंदगी जीते हैं। वाह वाह वाह वाह। अच्छा वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासा भाई, खुश आयो मजे में, दर्दे दिल हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, के दी चंदा जाने कैसी आओ, वेलकम टू शो, माशाल्लाह आप आ गई। हाँ जी मैं आ गई, देखो वो आ गया आदिल, बिल्कुल आपका गाना लगाते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और वासा भाई कहते हैं अधी सिडो जवाब माँ पंजो पान सा नाया गालाई दो, जेके पंजो पान सा गालाइंदा है वे मानू छा हूँ ओके जी। नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ मौजूद है, हेलो ए एम अंसारी।

इंसान जेको आहे न उहो घुर्जे बाक़ी त ॻाल्हियुनि करण वारा माण्हू त खोड़ हूंदा आहिनि समझो था अच्छा नियाज़ हुसैन मलिक भाउ तव्हांखे प्रोग्राम आणे पियो मोहबतूं तव्हांजो समंद गांगरू हमारे साथ मौजूद है हेलो साहिल खान कहते हैं प्लीज खुदा और मोहब्बत का गाना चलाइएगा जी मैं चलाने की कोशिश करती हूँ ए एम अंसारी क्या कहते हैं सिडोर जितना जोर दिला रही है वाइट एश प्रोडक्ट के लिए उतना जोर अगर आप मुझे फ्री में दिलाती तो अब तक मां भी सोनो थी वन्या हाँ ॾियारियूं था बाबा तव्हांखे ॾियारियूं था तव्हां थोरो सबर कयो हज़ार खान जतोई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम अदी सिदरा आप कैसी हैं अदा मां सफ़ा सुणी आहियां कहते हैं ठीक होंगी गुड हां जी आप सुनाएं कैसे हैं ठीक गुड और कहते हैं कल जुमा था आपको बहुत मिस किया गुड शो लाजवाब वाइट एश ब्यूटी शो एंटी स्किन ब्यूटी शो हां जी वेलकम करते हैं आपको ए मंसारी कहते हैं सॉन्ग प्ले करना अकेली ही ना भसारे जाया करो या फिर यो बो कोई चले मैं देखती हूँ मिल गया तो लगाते अनवर भाई कहते हैं अभी अंब खाओ अंब खाओ बाबा खाओ खाओ हजार भाई कहते हैं और टॉपिक यस हम करते हैं खुद से बातें पर सोचते हैं खुद के लिए हाँ बिल्कुल ये अच्छी बात है जो लोग खुद के लिए सोचते हैं वही शायद खुद से बातें करते हैं दर्द दिल कहते हैं हाँ सच में आ गई हाँ जी देखो और बेवस है मीर बेवस कहते हैं सदरा सुनो अच्छा गाना बोला है आपने सही सही सही चले मैं देखती हूँ ये गाना आपका लगाने की कोशिश करेंगे और जो लोग हमारे साथ मौजूद है पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि हम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर अभी तक आप नहीं कर चुके यानी कि आप सिर्फ सोच रहे हैं तो भाई जान आप जल्दी कीजिए कहीं देर हो गई ना तो फिर आप सोचते रह जाएंगे ऐं सोचींदा आहिनि जेके माण्हू घणो उन्हनि जा जेके आहिनि उन्हनि जे चेहरे ते बि झुरियूं अची वेंदियूं आहिनि त मां नथी चाहियां त तव्हांजे चेहरे ते झुरियूं अची वञनि ऐं तव्हां सोणा सोणा रहो हमेशा यंग रहो खूबसूरत रहो तव्हांजी स्किन ग्लो कंदी रहे छो त इहो सभु तव्हां डिज़र्व कयो था तव्हां इस्तेमालु कयो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अच्छा किशोर भाई कहते लॻे थो ओचरी वारो क्लिप ॾिठो न क्लिप छा मूं त मतिलब ही वायरल थियण खां पहिरियां सॼो इंटरव्यू ॾिठो ओ प्लीज ओजरी खैर सुठी शइ हूंदी आहे पहिरियां न खाईंदी हुयमि पर हाणे खाईंदी आहियां छो त अॻे असां नंढपण में कुझु चीज़ूं न खाईंदा हुआसीं वरी थोरा वॾा थींदा आहिनि थोरी उहे चीज़ूं असां खाईंदा हुआसीं मां हाणे हुन फेज़ में हलां पई त जेके चीज़ूं अवल न खाईंदी आहे हाणे उहे सभु खावांदी दर्द दिल के थी टॉपिक चवंदा हा यस करती हूं मैं खुद से बातें अच्छी बात है जी किया करे

अच्छा इमरान अली बिरोही भाई क्या कहते हैं कि बाजी पांचन जा डिनल जख्म एतरा त गहरा हुंदा आइन जेके वक्त भी नाहे भरे सगंदो या त ता बिल्कुल हकीकत वारी गाल कया पांचन जा जख्म जेके न वाकी नाहे भरबा चाहे वक्त केतरो ही छो न गुजरी वे असा के लगना त वक्त जेको आ वडो उस्ताद आहे आई मरहम आहे वक्त जे हथ में आई सब तवा जा जख्म भरे सगा पर ये नाहे हुंदो उहे माण्हू वरी जेके चीज़ूं ॻाल्हियूं विसारे न आहिनि सघंदा उन्हनि माण्हुनि जे लाइ वाकी वॾी तकलीफ़दार साबित थींदियूं इन चीज़ सो खैर पंहिंजो ख़्यालु रखो पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो पाण में मगन रहो ऐं पाण जे लाइ तव्हां वठी अचो वाइटिश प्यूरी प्रोडक्ट जी तव्हां इस्तेमाल करे सुहिणा सुहिणा थी वञो अच्छा यूनिस खोड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम करते हैं आपको टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं आप जनाब हमारे साथ मौजूद रहिए सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आता हूँ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: मेहदी हसन 13 जून 2012 को कराची के एक निजी अस्पताल में 84 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। आज 13 जून खान साहब मेहदी हसन के यौम वफात पर GMA प्रखास FM 88

0: साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं जनाब, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ मौजूद है मुझे बताते जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से बताइए 8881 के ऊपर और साथ साथ फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक की पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही साथ मैं ना आप लोगों की कुछ कॉल्स पिक करूंगी अभी इस लिंक में, ठीक है। तो कुछ आप लोगों की कॉल्स पिक की जाएंगी ताकि वो जो कॉलर्स बेचारे हैं जो कि मैसेज नहीं कर पाते, हमें कॉमेंट नहीं कर पाते, तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल होने का जो है ना वो पूरा हक है, और वो भी शामिल हो तो अच्छी बात है। तो बिल्कुल जो हम कॉल्स पिक करने वाले हैं, जो लोग कॉल्स पर आने वाले हैं, कोशिश ये किया करें कि मैं जब डेली बेसिस पर कॉल लेती हूँ तो आप रेगुलर जो है ना, यानी कि आज आपने कॉल करी कल भी आप कॉल कर रहे हैं, तो इन चीजों से थोड़ा सा गुरेज किया करें। आपको पता है मेरा मीटर जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, फिर मैं कॉलें लेना बंद कर देती हूँ। तो भाई अगर आप स्मूथली चलेंगे तो मुझे भी स्मूथली कॉल्स लेने में कोई इशू नहीं है। तो आप ये कोशिश किया करें कि अगर आपने आज कॉल करी है तो कल परसों जो है ना वो आप कॉल किया करें, रोज रोज कॉल नहीं किया करें। ओके, जैसे के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं। खुद से बातें करने वाले लोग जो है ना वो आजकल कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं, तो मुझे आप जल्दी से बताइए कि आप भी खुद से बातें करते हो। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो कहां से आप हमें सुन रहे हो और आपके क्या एरिया में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप जान चुके हैं कि जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने सारे प्रोडक्ट्स और इनका इस्तेमाल आप लोगों की जिंदगी लिए कितना और क्यों जरूरी है। साथ साथ हम यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना आप लोगों के लिए तैयार की गई हैं, जिसमें आप लोगों को सिर्फ दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक टी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं और दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और जैसे कि ऐसा है ना कि रेगुलर जो नाइट क्रीमें होती हैं जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर फ्रूट्स एड किए जाते हैं, मिल्क टाइप चीजें एड की जाती हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन इसके अंदर मौजूद है। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को, तो आप लोगों को बताते चलें कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आप लोगों को शानदार वाले रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो सिर्फ दो दिनों में वाजे आपको अगर नतायज चाहिए तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो इस्तेमाल करनी है। और जदीद अज्जा से तैयार की गई है जनाब, इसके अंदर हर वो चीज एड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन की मदद करने के साथ साथ आप लोगों की स्किन को चमकदार भी बनाए। और अगर आप लोगों की स्किन हमेशा डिहाइड्रेट रहती है तो आप लोगों की स्किन जो है ना वो हाइड्रेट भी हो जाती है, आप लोगों की स्किन ग्लोइंग भी बन जाती है और आप लोग हमेशा ग्लो करते रहते हैं। तो लड़के हो लड़कियां हो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से पहले आपने डी स्किन फेस वॉश का जो है ना वो भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेले मत लगाइएगा, डी स्किन फेस वॉश साथ में लाजमी लगाएगा। और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। ये चीजें जो इसके अंदर एड की गई हैं ये क्या ही शानदार चीजें हैं जो कि आप लोगों की स्किन को जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रखती हैं, आपके चेहरे को क्लीन बनाती हैं, आपके चेहरे को जो है ना हमेशा आप लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो नजर आता है और साथ साथ आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी प्यारी हो जाती है, सॉफ्ट क्लीन और क्लियर हो जाती है। तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल जी, डी स्किन फेस वॉश और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये नाइट क्रीम है तो आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और हमेशा खूबसूरत रहते जाइए, क्योंकि आपकी खूबसूरती अब आपके हाथों में है। जो तो मां यू इन लाइ चवंदी आहे त हाणे ॾिसो न, तव्हां अगरि वठी ईंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त तव्हांजे हथ में हूंदी न तव्हांजी खूबसूरती। तो तव्हां वञो बाबा वठी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश, ऐं तव्हांजी खूबसूरती तव्हांजे हथ में न बल्कि तव्हांजे चेहरे ते हुजे, समझो था। सो वञो वञो जल्दी जल्दी वठी अचो, ऐं तव्हांजे एरिया में नथी मिले त तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 नंबर ते, लाज़मी राब्तो कजो जी तव्हांजे एरिया में बि अवेलेबल थी वञनि। उन खां अलावा असां कॉलिंग वारो जेको सेगमेंट आहे उहो स्टार्ट कयूं था। ओके जी, सो अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 03-22-13-22-88। सो हम ये वाली कॉल पिक कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलर होगी, कॉलर है, देखें कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदिल्ला, कहिड़े सां गॾु मौजूद आहे? फहद भाई, छा हाल ख़ुश आहियो? अलहमदिल्ला, मज़े में। मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधो पिया? अच्छा, टॉपिक ते तव्हां छा चवण वारा आहियो? चलो मुख्य बताए तो केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है इनमें लता याना सोचो था
1: आपी ब्रोडेंट इस्तेमाल नहीं जा सा एरिया में हम लाने के जो चला लाड़का में तो
0: चलो लाड़का ने माची ता वठी वंजो पर ता किथे रहंदा आयो
1: अच्छा मस्त
0: अच्छा तो उते भी ता अवेलेबल कराए सको ता ने जो प्रोग्राम में नंबर बुदा दो ने राबतो करे
1: जी आप
0: चलो ठीक है केन दोस्तन की याद कंदा चलो जी जी मैसेज तो आज पढ़ी बैठूं था मिली हो आसान के ओके थैंक यू ओके जनाब सो कॉलिंग नंबर है 0332132322 एंड 88 फहद भाई ने कहा कि मैं लाड़काना आऊंगा तो परचेज करूंगा हमारे यहाँ नहीं मिल रहे ये प्रोडक्ट तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए नेक्स्ट कॉल हम पिक करते देखते कौन मौजूद है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम कैसे से सेकंड मौजूद है झंडो मरी वारो भा बिल्कुल याद आई मुख्य बुधायो प्रोग्राम बुध पाया
1: बिल्कुल प्रोग्राम तक बुद्धि प्रोग्राम हल ट्राई
0: अच्छा कॉल ट्राई कई ती लगी भी वही
1: बिल्कुल लगी हुई प्रोग्राम
0: चलो निंड भी जरूरी है मुख्य बुधायो तो तुम कड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल करो पाया कहो बाबा नालो बुधाए ना मां सोचा थी तो नालो खबर आए या ना
1: नालो याद है पर ये ना
0: हाँ निंड माओ थी मन डायरेक्ट कॉल कई
1: जी जी
0: चलो निंड माओ थी कॉल कई वैसे मानो जो दिमाग हट कम कर आई ना चलो खेड़न दोस्तन की याद कंदा चलो थैंक यू मुख्य लगो दोस्त नाला भी विसर पर देखे दोस्त फुल नाला याद हुआ बाबा रुगो विसरे थी गाल तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में विसरे थी दिसो या केडी गलत गाल आ है यो सफा हेठा न कबो बाबा उन्होंने मानन सा जके ये ठगियो कंदा है सो

0: Okay, so calling number 0332-1322 and 88. Next call. This one the Kerala Sagar Sagar Majuda. Hello, Assalamu Alaikum.
1: Waalaikum Assalam.
0: Mulal Salamadat, Kerala Sagar Sagar Majuda.
1: Vasa bhai,
0: si call lagiya. Vasa bhai, kushayo. Alhamdulillah. Program to Vasa bhai, budde pe topic de chacha. वासा भाई ताजो लफ्ज समझ में आया तो हाने बुधायो
1: बिल्कुल आदमी के पण पांच सागर में जाए
0: दरबणा वो छाऊं दो
1: आज को पांच सामना करना चाहता है तो मैं समझ

सहीगा। और साथ साथ आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0333। अस्सलाम वालेकुम।

0: acqua gonfia, acqua orizzata.
1: अच्छा मुख्य बुधायो तो तहां जके बुधाया पी प्रोडक जिन जे बारे में उनन के इस्तेमाल कयो या सिर्फ बुधो था प्रोग्राम
0: अस्त्रो प्रोग्राम सा बुधो पे ता जो इस्तेमाल कोन कया था या सा ने मिलन को
1: था मिलन कोन था असल मतलब वजह या है तो मिलन कोन था चलो तां अवेलेबल करायो ना जेको नंबर बुधाईंदी आ प्रोग्राम में उनके कॉल करे वठोस मैं
0: तो कॉल करना भी आई तां जे प्रोग्राम में जे क्यों बुधण में जो ये और कौन को जन साथे करे
1: छा बुधण में
0: क्यों ना प्रोग्राम में जे जो
1: बताओ हां वाकई बंद करे छो चंगो याद जा रहा है

0: हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अच्छा एम अंसारी कहते मां भी ढीट हां फ्री सर्विस ते सोचिंग नम वाइटेश बारन के मुजो मैसेज पढाए जो ता यो मैसेज जको ना जको नंबर ता के बुधाए थी जिंदी तवा के रातो करे पांजे एरिया में घुराना है उने नंबर ते यो मैसेज शेयर करी सडो ठीक आ ता हु पाण पढा नहीं ता छा था चो अच्छा हजार भाई इस्तेमाल करें क्या बात है बहुत बढ़िया अमानोला टगड़ हमारे साथ मौजूद है हेलो

अच्छा क्या मतलब, जो लोग हमारे प्रोग्राम में नहीं शामिल हो रहे तो आ जाए भाई। अच्छा किशोर भाई कहते हाँ हाँ असा गजनी ना असा के खबर आसा वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो बुधू पया न मता तक गाल विसरी वने तरी बुधाईंदी आया। अच्छा जदी मां कॉल ते मानन का पुछन या तो अरे वो गजनी थी वेना तडी अच्छा हजार बार तुम मोहबतू आए अमानुल्लाह टगर बहुत शुक्रिया। इंतजार मौत बराबर जो लगे बना काले। हाँ जी बिल्कुल, एक में भी तन्हा थे सो में भी अकेले हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले। मोहम्मद समान भाई आपका बहुत शुक्रिया। एम कहते हैं कि टॉपिक पे कहूंगा कि हमें पहले देखना ये है कि हम रहते किस मुल्क में हैं। पैदा होते ही हमें वो चीजें मिली। एग्जैक्टली शायद आप सही हैं। वैसे ऐसी बातें बताई नहीं जाती, बंदा नजरों में आ जाता है। तो हाइट रखें खुद को। अच्छा उन खां अलावा जी को टाइम थियो आ हाणे तव्हां खां इजाज़त वठण जो। सो वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात थियण वारी आहे मुंहिंजी सुभाणे वारे प्रोग्राम में 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ रहंदो आहे। प्रोग्राम वाइट एशियन स्किन ब्यूटी शो में पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कि मुझो मकसद है कानून लागू करने इदारा मुल्क के अमन लाए दिन रात कम कन पे सदन खिदमत कुर्बानन जो एतराफ एतराम थन घुर्जे। पार्लियामेंट ते कदें भी को ठह न कंदी पार्लियामेंट पाकिस्तान की ताकत है माजी में कल गलतियों के भी सुधारे सके तो कौमी असेंबली में बजट से गाली अपोजिशन लीडर महमूद खान तकजाई समूरन मसलन जो रुगो एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेवार करार न तो दई सके रियासत के मसला ताकत बदरा गाल जरिए हल करण घुर्जन मान यकीन दियारो तो सदन इलाको सदन ही रहो मसला हल थी वेंदा।

सिक्योरिटी फोर्सेज जो उत्तर वजीरिस्तान में ऑपरेशन एकवी दहशतगर्द मारजी पाया टी अठेताली थी पो आईएसपीआर मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज कुछ इतलाह से मीराशाह परपासे में ऑपरेशन कया जै दौरान एकवी दहशतगर्द मारजी पाया। 72 कलाकन दौरान ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दन के 4 अहम कमांडर समेत 48 दहशतगर्द मारजी पाया। इलाके में क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी रहो। सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ कामयाब कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेज की वाखाण कई। दहशतगर्दन के खात्मे तई कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो वर्छाओ। ईरान अमरीका से शुरुआती मुआहदे से इतफाक थियण की तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराग़ी है तो अमरीका से डीह बिन में मुआहदो थी सके तो मुआहदे से सयू डिजिटली कयू व्यू। असाजी तलवार हमेशा जी आबन हुरमस से लटकंदी रही। बिन सुपन के बदल मफामदी यादाश्त है जैसे बिन महीन तई गालू अबन हुरमस जो इंतजाम माजी का मुख्तलिफ हों जै बाबत तेहरान जो फैसलो हतमी है।

सिंध जे मुख्तलिफ़ शहरनि में आबाद घरनि जो पाणी जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। काज़ी अहमद जे मीर रुकन शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबाद घरनि जो एहतजाज। जातीअ जे

0: सगवाणी भरिसां बाली उरड़ी वगे फोत घोट सुबह सादक खोसो में सतन वरियनि जी बिस्मा लाशारी उरड़ी वगे फोत थी वई गोठाण पारां डॉक्टर जूं टीमूं मोकिलण जो मुतालबो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
7: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
6: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
7: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252586
7: जी हां बुड़ी 3315257686
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: Yeah!

ॾिनी आहे। ज़रई मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी खे ख़तम कयो आहे। तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया विया आहिनि। पघारदार तबिके खे वधीक रिलीफ ॾियण जी कोशिश कई आहे। सूबनि पारां मर्कज़ जी मदद करण लाइ थोराता आहियूं। सूबनि पारां नल सहूलतनि 3 सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे।

वफाकी बजट पगारदार सनतकार एक्सपोर्टर्स लाए है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वाले ममलकती वजीर बिलाल अजरकियानी समूरन शोबन तां बार घटाने की कोशिश कई है। बजट पैं घर ठाण बजट है। घट पगार खड़ंदड़न तां गुजरियल साल ही टैक्स घटायो हो, इन भेरे पर रिलीफ डिनो है। व्यापार एक्सपोर्टर्स ए शिपिंग इंडस्ट्रीज तां भी टैक्स घटाया है। बजट से सनतन के हथी मिलने से गडोगड रोजगार जरिया भी पैदा थन्दा।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात कराने जो मुतालबो। कौमी असेंबली में गलाइंदे बैरिस्टर गोहर चो सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम इंदो। बजट में गरीबन लाए कुछ भी ना है, न बिजली की कीमत घट थी, नई लोडशेडिंग से फर्क पयो है, नई बो कुछ सस्तो थींदो।

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मईशत दुरुस्त रुख में वही रही है, माशी इस्तेहकाम जरिए वही रही है। नाणे वाले फाकी वजीर मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते है त 70 अरब रुपये की वाधू सब्सिडी दिनी है। ज़रई मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी के खत्म कयो आहे। तामीराती शोबे तां भी टैक्स घटाया आहिनि। पघारदार तबके के भी वधीक रिलीफ ॾियण जी कोशिश कई आहे। सूबनि पारां मर्कज़ जी मदद करण ते थोराए तयूं। सूबनि पारां ॾिनल सहूलियतनि 3 सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे। वफाकी बजट पघादार सनअतकार ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वारे मुमलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी चयो त सभिनी शोबनि तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीउ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़नि जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारियुनि एक्सपोर्टर्स ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा। अपोजिशन जी हुकूमत खे गॾिजी मामलनि खे अॻिते वधाइण जी आछ। क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान जगज़ई चयो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघिजे थो। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिकु माहिदो करे त जीअं सियासी जमातूं हिक ॿिए जूं टंगू न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी आहे, अवां सूबनि खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानी ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिक ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझु न थींदो। पीटीआई बानी सां मुलाक़ात थींदी, छा थींदो?
2: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए। मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल के जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल के जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिसाल के मंच की तरफ बढ़े। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अ जे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत में तैयार हूं।
1: वज़ीर आज़म हिकु भेरो ॿीहर अपोज़िशन खे मिसा खे मईशत ऐं मिसा खे जमहूरियत ते ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे, पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं, असांजा सभु भाइर आहिनि। को बि जहिड़ो न आहे पहिरीं बि अपोज़िशन लीडर जी हैसियत में मिसा खे जमहूरियत ऐं मिसा खे मईशत लाइ चयो हो, पर मुंहिंजे ख़ुरूस ते ॿधल आछ खे रद्द कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो वेहो अॻिते वधो। चइनी सूबनि जे हिक जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जे अमन लाइ ॾींहुं राति कम करे रहिया आहिनि। सदन ख़िदमतनि ऐं क़ुर्बानीनि जो एतराफ़ ऐं एतराम थियणु घुर्जे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी सां मुलाक़ात करण जो मुतालबो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सियासी इस्तेहकाम सां ई मुआशी इस्तेहकाम ईंदो। बजट में ग़रीबनि लाइ कुझु बि नाहे, न बिजली जी क़ीमत घटि थी, न ई लोड शेडिंग ते फ़र्क़ु पियो आहे, न ॿियो कुझु सस्तो थींदो।
2: मैं तो खत्म करा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहां खड़ा हूं या मैं यहां आना चाहता हूं। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब।
1: وزیر اعظم شہباز شریف جا اپوزیشن ممبر سے آوازن تا دلچسپ جملہ ثناء اللہ مستی خیل کے واپس اچھن جی بھی دعوت دئی چھڑی پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر جی بھی سارا اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی کے بھی درست کرا ڈنو شہباز شریف چھو تا ثناء اللہ مستی خیل واپس اچھن چاہے تو پر کچھ مسئلہ اتس ایف پی آر میں سفارشی کلچر کے ختم کرے چھو ہے ایف پی آر میں اربیں روپئے جی کرپشن ہوئی رگو شوگر انڈسٹری میں 60 ارب روپئے جو گھپلو ہو سود سبا وارے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں چھو ہے تو پگار دار شخص شوگر انڈسٹری جو بار چھو کھنے سدھارا کرے کھنڈ جی صنعت میں ٹیکس چوری روکے 60 ارب ٹیکس حاصل کیا ماضی میں ملکی ڈیفالٹ تے شرطوں لگی ہوئیں موجودہ حکومت معاشی استحکام آندو جو اگتے ودی رہو ہے
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: آپ سن رہے ہیں
4: جی اے ایف ایم
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578
6: جی ہاں بڑی 231 525 786
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी एफ एम नेटवर्क जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम लीगल कॉर्नर सान करे आवां आहां जो पैंजो मेज़बान बाबर शेख इन्हीं उम्मीदों से आवां बिल्कुल ठीक ठाक हूं अल्लाह पाक हम सभी ते पैंजी रहमतुन जा साया बरकरार रखे समय प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जो अवां हर हफ्ते बुधंदा आयो जी एफ एम नेटवर्क ता अज के इन लीगल कॉर्नर प्रोग्राम में असो टॉपिक है इलीगल डिस्पोजिशन लेसस असांजे पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आर्टिकल 23 राइट टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी डे पियो जी हाँ यानी तां पाकिस्तान जे कंहिं बि इलाइक़े में हुजो तव्हांजी जेका प्रॉपर्टी आहे उहा खे ख़रीद करण विकिरो करण ऐं ट्रांसफर करण जो हक़ हासिल आहे ऐं आर्टिकल 24 इन जी प्रोटेक्शन ॾे पियो एज़ वेल एज़ पाकिस्तान में इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 खां लागू बि आहे ऐं उन मुतालिक़ बि असांजे अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कशन थींदी असांजे प्रोग्राम में अॼु लाइव स्टूडियोज में महिमान आहिनि एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब जेके तक़रीबन 10 सालनि खां वठी एडवोकेसी सां वाबस्ता बि आहिनि लेक्चरार बि आहिनि लॉ कॉलेज में ऐं तमामु घणा इन्हनि जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि क्वालिफाई थियल आहिनि त एडवोकेट साहब जी तरफ़ हलंदासीं शहबाज़ साहब अस्सलामु अलैकुम ऐं वेलकम टू द स्टूडियो
1: वेलकम सलाम बाबर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम वंस अगेन एंड आई एम वेटिंग फॉर होल वीक and I am waiting for your messages and call that you will call me ke next program ta sa gad karno
0: yes sir asan di paani ya ji
1: I do wait for whole year for whole week
0: ke
1: ta zarur mukhe invite kando
0: bilkul
1: so I am here once again
0: before aaya bhi aayo hai asan di khwahish hundi ta asan har week agar har week na to be week lazmi program
1: thank you very much this is your love and respect for me that you are giving me in your program
0: thank you so much sir aj jo asan jo topic aaye illegal disposition सो इलीगल डिस्पोजिशन जी तरफ़ अचण खां पहिरियां पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 एंड 24 जी तरफ़ असां अचूं पिया इनखे थोरो तव्हां ब्रीफली वज़ाहत कंदा
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सभ खां पहिरियों बाबर 10-12 प्रोग्राम न बल्कि सॼो साल प्रोग्राम करण खां पोइ हिकड़ी शइ त मां इन सम्झी वियो आहे त यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अगरि तव्हां एडवोकेसी में अचो त वकालत में तव्हांजो फ्यूचर तमामु सुठो आहे वजह इहा आहे त हिन पूरे साल में जेतिरा बि असां प्रोग्राम कया आहिनि तव्हां मूंसां कया आहिनि या डिफरेंट जेके बि असांजा हिते एडवोकेट भाइर आया आहिनि त हुननि सां कया आहिनि लर्नेड काउंसिल सां जेके बि आया आहिनि इहा आहे त तव्हांजी स्टडी ऐं रिसर्च थोरी डीपली थी वई आहे
0: ऐं
1: तव्हांजा यूनिक टॉपिक जेके आहिनि जेके पब्लिक सां रिलेटेड हुजे छोकि ला त इलाही वसी आहे
0: बिल्कुल
1: पब्लिक सां रिलेटेड तव्हांजा टॉपिक आउट क्लास हूंदा आहिनि हे बि त उन्हनि टॉपिकनि मां हिकिड़ो तमामु सुठो टॉपिक तव्हां खणी आया जिते डिस्कशन कंदासीं इनशाला फर्दर जेको आर्टिकल जे हिसाब सां पुछियो
0: हाणे जी जी आर्टिकल 23
1: आर्टिकल 23 तव्हां पाण ई अलहमदुल्ला सुठो ब्रीफ करे वियो सुठो ई ॿुधायो वियो नो नीड टू रिपीट इट हेयर
0: बट असां हासिल था कयूं
1: ॾिसो इन में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए रहा की एवरी सिटीज़न हाणे सिटीज़न केरु आहे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 मुताबिक़ सिटीज़न उहो माण्हू आहे जंहिंखे नेशनैलिटी हुजे पंहिंजे मुल्क जी सपोज़ हिकिड़ो पाकिस्तान या मां या सबर मां NIC होल्ड कयां थो पियो मुंहिंजी पैदाइश हितां जी आहे मुंहिंजे वॾनि जी पैदाइश हितां जी आहे ऐं मां पाकिस्तानी आहियां या इन खां अलावा कुझु अहिड़ा माण्हू जेके थ्रू हिकिड़ो स्पेसिफिक पीरियड खां वठी करे हिन वक़्तु पाकिस्तान में रहनि था ऐं उन पीरियड जे करे उन पर्टिकुलर पीरियड जे करे हुननि पाकिस्तान जी नेशनैलिटी अक्वायर करे छॾी आहे या ड्यूअल नेशनैलिटी जेके हूंदा आहिनि माना हिकिड़ी ॿिए मुल्क जी बि नेशनैलिटी रखंदा आहिनि पंहिंजे मुल्क जी बि नेशनैलिटी रखंदा आहिनि हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए रहा उहो माण्हू जेको पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखे हुनखे हक़ आहे राइट आहे प्रॉपर्टी वठण जो प्रॉपर्टी खे डिस्पोज़ ऑफ करण जो प्रॉपर्टी खे अक्वायर करण जो ऐं प्रॉपर्टी खे सेल आउट करण जो आर्टिकल 23 असांखे उहा सॼी लिबर्टी ॾिए थी पई जेको हिकिड़ो सिटीज़न खे हिकिड़ो पाकिस्तान एज़ अ स्टेट हिकिड़ी लिबर्टी ॾिए थी त पंहिंजी प्रॉपर्टी खे वठणु यूज़ करणु इस्तेमालु करणु विद इन एम्बिट ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जे अंदर ई रही करे पंहिंजी प्रॉपर्टी खे स्पेसिफिक तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां प्राइवेटली ऐं जेको आहे न पर्सनली बि इस्तेमालु करे सघे थो पियो
0: ऐं सेकेंडली सर आर्टिकल 24 में प्रोटेक्शन हिन जी हासिल आहे
1: जी
0: हुन ते बि असांखे थोरी वज़ाहत
1: आर्टिकल 24 बेसिकली इहो आहे की अगरि को माण्हू प्रॉपर्टी वठी थो छॾे हाणे उहो मालिक आहे हुन प्रॉपर्टी जो ठीकु आहे तव्हां हुन माण्हू खे प्रॉपर्टी मां तेसि ताईं डिस्पोज़ नथा करे सघो जेसि ताईं उहो को इलीगल तरीक़े सां हुन एडॉप्ट न कई हुजे या को कानूनी तरीक़े सां सपोज अगर को कानूनी तरीक़े या अहिड़ी जॻह ते रहे थो पियो जेकी स्टेट सां रिलेटेड प्रॉपर्टी आहे गवर्नमेंट सां रिलेटेड प्रॉपर्टी आहे हुन अक्वायर करे छॾी आहे त तेसि ताईं तव्हां डिस्पोज़ नथा करे सघो जेसि ताईं उहो लॉफुल तरीक़े सां अदरवाइज़ इट विल बी कॉल इलीगल डिस्पोज़ेशन 2024 बेसिकली प्रोटेक्ट थो करे राइट माना कंहिं बि सिटीज़न जे उन हक़ खे प्रोटेक्ट थो करे पियो जेको उहो प्रॉपर्टी ख़रीद करण खां पोइ कोई हुनखे बेदख़ल न करे सघे
0: प्रॉपर्टी वठण
1: जो हक़ 24 में प्रॉपर्टी खे प्रोटेक्ट करण जो
0: सर हाणे अचूं था इलीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट 2005 ते हुन तरफ़ अचण खां पहिरियां ॿुधाईंदा त वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इलीगल डिस्पोज़ेशन
1: बाबा इलीगल मीन्स ग़लति तरीक़े सां डिस्पोज़ेशन मतिलब बेदख़ल करे छॾणु कंहिं बि माण्हू खे अनलॉफुली पंहिंजे घर मां या जायदाद मां या प्रॉपर्टी मां बेदख़ल करण खे ही इलीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट चऊं पिया सिंपल ज़बान में
0: अच्छा हिन खे थोरो एग्ज़ाम्पल अगरि तव्हां
1: एग्ज़ाम्पल मतिलबु एग्ज़ाम्पल इहो हूंदो जीअं हाणे तव्हां हिते सपोज मूंसां गॾु वेठा हो तव्हां हिकड़ी प्रेमिसिस में वेठा हो अगरि कोई ॿाहिरों को माण्हू अचे ऐं तव्हांखे फोर्सफुली थो ॿाहिरि कढी छॾे उन फोर्सफुल ॿाहिरि कढण खे ई जेको आहे न इलीगल डिस्पोज़ेशन चइबो आहे छोकी तव्हां वटि अख़्तियार नाहे बग़ैर अख़्तियार जे तव्हां कंहिं माण्हूअ खे उन जी राइटफुल ओनरशिप तव्हां ॿाहिरि नथा माना धकेले सघो या हुनखे कढी सघो दैट इज़ रिलेटेड टू दैट टॉपिक रिलेटेड टू इलीगल डिस्पोज़ेशन
0: सर हाणे पर्पज़ ते अचूं इलीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट 2005 जो पर्पज़ छा हो
1: 2000 इलीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट जो जेको पर्पज़ हुयो मेन पर्पज़ हुयो टू प्रोटेक्ट द सिटीज़न फ्रॉम लैंड ग्रेबर लैंड माफिया ऐं फ्रॉम दोज पर्सन हू आर फोर्सफुली इवेक्टिंग समवन फ्रॉम हिज़ प्रॉपर्टी या फ्रॉम हिज़ लॉफुल ऑक्यूपेशन्स उन खां प्रोटेक्ट करण जे लाइ दैट लॉ वॉज़ क्रिएटेड 2005
0: ऐं हीउ सर जेको एक्ट आहे इहो पाकिस्तान में जेको आहे कहिड़ी हद ताईं लागू थिए थो
1: हिनखे चवंदा आहिनि एक्सटेंशन थ्रू आउट पाकिस्तान जी जेतिरी बि हद पाकिस्तान जे जेसिताईं बि माना पाकिस्तान जी डोमेन वञे थी पई तेसिताईं पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान में इहो लागू थिए
0: ऑल राइट ऐं सर सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन आहिनि प्रॉपर्टी थी वियो ऑनर थी वियो एंड इलीगल पोज़ीशन ऑक्यूपायर इन ते थोरो असांखे ब्रीफ ॿुधाईंदा देन वरी असां ॻाल्हाईंदासीं लॉफुल ऑनर एंड लॉफुल ऑक्यूपायर ते
1: लॉफुल ऑनर मीन्स द पर्सन हू इज़ होल्डिंग द प्रॉपर्टी जंहिंजे नाले ते प्रॉपर्टी आहे ठीकु आहे या जेको अक्वायर करे थो जीअं आर्टिकल 23 में मां तव्हांखे ॿुधायमि कॉन्स्टिट्यूशन जे की कोई बि माण्हू जेको प्रॉपर्टी ख़रीद थो करे अक्वायर थो करे या प्रॉपर्टी में रहे थो पियो लीगली तरीक़े सां ठीकु आहे न विद इन एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंहिं बि रूल ऐं रेगुलेशन खे वायोलेशन नथो करे पियो उन सां रिलेटेड हूंदो आहे त उहो लॉफुल ऑनर आहे उन प्रॉपर्टी जो मालिक आहे देन देर इज़ अ नेक्स्ट टर्म आहे जेकी आहे उहा लॉफुल ऑक्यूपायर लॉफुल ऑक्यूपायर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे कि उन टेम्पररी बेसिस ते उहा जॻह वरिती आहे कंहिंखां करे सपोज़ असां ॿ टे ॿ हफ़्ता पहिरियों रेंट प्रेमिसिस टेनेंट जो कयोसीं त टेनेंट जेको हूंदो आहे न बेसिकली उहो लॉफुल ऑक्यूपायर हूंदो आहे या उन परमिशन वरिती हुजे लॉफुल ओनर खां फॉर स्पेसिफिक पीरियड ते रहण जे लाइ उनखे चइबो आहे लॉफुल ऑक्यूपायर
0: ऑक्यूपायर ऑल राइट
1: फ़र्क़ु इहो आहे त होॾे टाइटलमेंट आहे इंटाइटलमेंट उन वटि रहंदी सिर्फ़ पोज़ीशन यूज़ करण लाइ ॾींदो उनखे लॉफुल ऑक्यूपायर चइबो आहे
0: मतिलब हिन मां असांखे वाज़े थी वियो त प्रॉपर्टी छा आहे सेक्शन 2 में इनजो
1: सेक्शन में मतिलबु इहो त हुजनि ॿई राइटफुल रॉन्गफुली माना न हुजनि प्रॉपर्टी बि उन्हनि जी हुजे ऐं अगरि को ऑक्यूपायर बि आहे या उते रहे थो पियो फॉर टेम्पररी बेसिस ते उहो बि लॉफुल हुजे तरीक़े सां
0: सर सेक्शन 3 में प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोज़ेशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे इन सेक्शन खे जेको आहे त हिन एक्ट जो बैकबोन छो पियो चयो वञे
1: हिन एक्ट जो बैकबोन हिन करे चयो वेंदो आहे बाबर त पहिरों ॾींहुं तव्हां डेफिनेशन ते अगरि तव्हां वेंदो त हिन में चार शयूं हिन जा चार इनग्रीडियंट्स आहिनि
0: ओके
1: ठीकु आहे उन इनग्रीडियंट जो सभ खां पहिरियों इनग्रीडियंट्स इहो आहे कि नो बॉडी कैन डिस्पोज़ेस एनी पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी ठीकु आहे ऐं उनखां पोइ उहो प्रॉपर्टी खे ग्रेब न कंदो प्रॉपर्टी खे इलीगल तरीक़े सां ग्रेब करे थो पियो इलीगली तरीक़े सां डिस्पोज़ेस करे थो पियो इलीगली तरीक़े सां कंट्रोल करे थो पियो इलीगली तरीक़े सां उनखे ऑक्यूपाई करे थो पियो उन जॻह ते इन जे करे इनखे बैकबोन चयो वेंदो आहे ॿियो बैकबोन इन करे चयो वेंदो आहे जेकॾहिं असां हिन सेक्शन जी अगरि असां डेफिनेशन्स में वेंदासीं त इहे चार इनग्रीडियंट्स असांखे मिलंदा जेके ज़ाहिर कंदा त कंहिं बि माण्हू खे फोर्सफुली इवेक्ट कयो वियो आहे इन चार बेसिस ते इलीगली डिस्पोज़ेस्ड इलीगली ग्रेब्ड इलीगली कंट्रोल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड माना माण्हू आया दाख़िल थिया डिस्पोज़ेस कयनि कंट्रोल कयनि ग्रेप कयनि वरी उहा ई जॻह ऑक्यूपाए करे छॾियनि हाणे हे बैकबोन ते मां अचां थो रिपीट थो कयां सेंटेंस खे बैकबोन इन करे चयो वेंदो आहे अगरि कोई बि माण्हू वायलेशन करे तो इन सेक्शन जी त कें भी माण्हू खे लॉफुल ओनर खे या लॉफुल ऑक्यूपायर खे इलीगली तरीक़े सां डिस्पोज करे थो पियो त उन ते 10 सालनि जी सज़ा लागू थिए थी पई प्लस में उन ते फाइन बि आहे ऐं 544A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जे हिसाब सां उन जे मथो कंपनसेशन बि आहे। ठीकु आहे, हिकिड़ो जीअं कंपनसेशन छाजी थींदी आहे, पनिशमेंट बि तव्हांखे सम्झ में अची वई, तव्हांखे फाइन बि सम्झो की कोर्ट ॾींदी आहे अगरि प्रूफ थो थी वञे प्राइमा फिशा ऐं जेको आहे मींस री एक्ट्स री आहे प्रूफ थो थी वञे की हिननि हिननि खे जेको आहे न इंटेंशनली ऐं ॼाणी हुजी करे हिन घर मां ज़ोरी ज़बरदस्ती कढियो आहे जेको हुननि जो हक़ न आहे उहो अक्यूपाए कयो आहे हिननि। कंपनसेशन में छा थींदो आहे त जीअं माण्हू दाख़िल थिया तोड़ फोड़ कयनि जॻह भञी छॾियनि जॻह जो सामान भञी छॾियनि इन द एंड हुननि खे सज़ा मिली त कोर्ट हुन जे मथो 544A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जे हिसाब सां इन्हनि ते कंपनसेशन बि लागू करे छॾंदी आहे। हाणे तव्हां हिन खे जेको बि तव्हां इंजरी ॾिनी आहे हिन खे उहो तव्हां भराए ॾींदो। दैट इज़ द रीज़न की हिन खे बैकबोन चयो वेंदो छो की हिन में पनिशमेंट बि आहे ऐं इन में मेन इनग्रीडियंट्स ई ॿुधाया विया आहिनि त इलीगल डिस्पोज़िशन तॾहिं लागू थींदो जॾहिं इहे चार इनग्रीडियंट्स अवेलेबल हूंदा।
0: अच्छा सर, हिन ते थोरो असां वाज़ी तौर ते अगरि ॻाल्हायूं इलीगल डिस्पोज़िशन ते, प्रॉपर्टी जेकी आहे जेका प्रॉपर्टी आहे उन ते कीअं इलीगल डिस्पोज़िशन थिए पई? हिकु त तव्हां मिसाल ॾिनी ऑफिस जी, ठीकु आहे, प्लॉट्स बि माण्हुनि जा हूंदा आहिनि ऐं प्लॉट्स ते बि जेको आहे त काफ़ी अर्सो अगरि उहो खाली रहे पियो माण्हू अदावत करणु शुरू कंदा आहिनि या कुझु गवर्नमेंट जा प्लॉट हूंदा आहिनि जिते कुझु लैंड माफ़िया खणी अचूं उहा प्लॉट कब्ज़ा करे वठंदी आहे, इन ते थोरी असांखे वज़ाहत सां समुझाईंदा।
1: पहिरों त सवाल इहो हुजणु खपे त इलीगल डिस्पोज़िशन खां अॻु में कहिड़ा कानून हुया या कहिड़ा सेक्शन्स हुया जंहिंजे करे जेको आहे न इलीगल डिस्पोज़िशन जे अचण जी ज़रूरत
0: पई।
1: असांखे थोरो बैकग्राउंड में पोइते वञणो पवंदो। पाकिस्तान पीनल कोड में कुझु सेक्शन आहिनि 441 खां वठी करे 445 ताईं, पीपीसी क्रिमिनल ट्रेस पास।

0: एक्शन खणंदो हुयो, एप्लीकेशन ॾींदासीं हिते मौतमार, हिते मरण जो ऐं जेको मारण जो कतरो इलाही आहे, त हुनमें मैजिस्ट्रेट इंटरवीन करे ॿिन्हिनि पार्टीनि खे घुराए करे पाण में सेटलमेंट कराए छॾंदो हुयो। हाणे रीज़न थियो त हाणे डिस्टिंग्विश कीअं कयूं, हाणे कोई चए हिन मूंखे ज़बरदस्ती कढियो आहे। सो लैंड ग्रेबर ऐं लैंड माफ़िया, लैंड प्रॉपर्टी ग्रेबर जी ऐं फोर्सफुली कंहिंखे ज़ोरी ऐं ज़बरदस्ती विथ इंटेंशन कंहिंखे अगरि तव्हां पंहिंजी प्रॉपर्टी मां बेदख़ल कंदो, उनखे स्पेसिफाई करण लाइ हे स्पेशल लॉ क्रिएट करे वियो, इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट, जी डिस्टिंग्विश थी करे डिस्टिंग्विश थिए के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में ऐं फोर्सफुल इवेक्शन में जीअं फ़र्क़ु वाज़िया नज़र अची वञे, फॉर देट रीज़न देट एक्ट वॉज क्रिएटेड।
1: ऑलराइट,
0: प्रॉपर्टी हाणे तव्हां अचूं था प्रॉपर्टी हिते, प्रॉपर्टी जो कंसर्न आहे इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमोबल प्रॉपर्टी उहे प्रॉपर्टी हूंदियूं आहिनि दैट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर प्लेस ईज़ीली, एडहेयर टू स्टिक हुजनि, ज़मीन सां लॻल हुजनि। हाणे हुन में तव्हांजा घर बि थी विया, तव्हांजी बिल्डिंग्स बि थी वियूं, तव्हांजा जेके बि अगरि ज़रई ज़मीन सां रिलेटेड, एग्रीकल्चर लैंड सां रिलेटेड हुजनि, उहे प्रॉपर्टी बि इमोबल प्रॉपर्टी सॾाईंदा आहिनि। उतो बि तव्हांखे कोई बेदख़ल नथो करे सघे, अगरि कंदो त उहे ट्रेस पास वारे में ऐं इलीगल डिस्पोज़िशन जे दायरे में अची वेंदो।
1: All right. So, listeners, program में वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। असां कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं, देन असां मोटींदासीं प्रोग्राम में। टॉपिक आहे असांजो इलीगल डिस्पोज़िशन, ऐं ब्रेक खां बाद में जॾहिं ईंदासीं त ॻाल्हाईंदासीं कॉग्निज़ेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस सेक्शन 4 छा पियो चए। असां सां गॾु एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि, जेके वधीक अवां सां गुफ़्तगू कंदा। अवां लाइव कॉल जे ज़रिए असांखे जॉइन बि करे सघंदव। असांजो नंबर आहे 03000113488। सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, असां सां गॾु रहिजो।

0: पचल की सरमस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: दादो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो जीएफएम 90.4।

0: सो लिसनर्स, बिल्कुल प्रोग्राम लीगल कॉर्नर में वंस अगेन बाबर शेख हवा सां गॾु आहे ऐं स्टूडियोज़ में असां सां गॾु मौजूद आहिनि एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब. ऐं असांजो अॼु जो टॉपिक आहे इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट. मां सर ने प्रोनाउंस सही नथो कयां, सो लिसनर्स, ब्रेक ते वञण खां पहिरियां मूं ॻाल्हि कई त कॉग्निज़ेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस ते असीं ॻाल्हाईंदासीं सेक्शन 4 ते. पर शहबाज़ साहब, हिन तरफ़ अचण खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां असांखे जेके टे टर्म्स आहिनि अवां यूज़ कयूं पंहिंजे गुफ़्तगू में, लैंड ग्रेबर, लैंड माफ़िया ऐं प्रोपर्टी ग्रेबर, इन ते थोरो डिफाइन कंदा, छा इहे हिकिड़े ई टर्म यूज़ पिया कयूं टे, या टे इंडिविजुअल्स आहिनि?
1: इहे टाइप ऑफ सिंडिकेट, इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इलीगली एक्वायर द प्रोपर्टी ऑफ समवन.
0: ओके,
1: माना उहो ग्रुप, उहो माण्हुनि जो हिकिड़ो जथो हुजे जेके हैबिचुअली या पैसा वठी करे या पाण मिली करे कंहिंजी प्रॉपर्टी ते कब्ज़ो करे छॾनि लीगल तरीक़े सां, या कंहिंजे पैसनि जे थ्रू, या कंहिंजे चए ते कंहिं माण्हू खे बेदख़ल कराए छॾनि. सो इहा हिकिड़ी टर्म आहे, लैंड ग्रेबर, लैंड माफ़िया, प्रॉपर्टी. इन जो सिर्फ़ ऐं सोल पर्पज़ इहो हूंदो आहे की कंहिं बि माण्हू खे उन जी राइटफुल ओनरशिप तां, या जेको बि अगरि लॉफुल ऑक्यूपायर आहे
0: जी,
1: उनखे बेदख़ल करे उनखे जेको आहे न पंहिंजे कब्ज़े में आणे
0: छॾणु.
1: दिस इज़ अ सेम टर्म, हिकिड़ो सिंडिकेट तां लफ़्ज़ यूज़
0: करे सघो. सो सर, सेक्शन 4 ते अचूं पिया, कॉग्निज़ेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस ते. अवां ॿुधाईंदा त इन सेक्शन तहत कोर्ट जेकी आहे कहिड़ी बुनियाद ते कॉग्निज़ेंस वठी सघे थी. अच्छा, इन तरफ़ हलण खां पहिरियां लिसनर्स, तव्हांखे मां लाइव कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां, 03000113488. इन गुफ़्तगू जे दौरान ई तव्हांजो लाइव कॉल्स प्रोग्राम में असां इंक्लूड कंदासीं. तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी सघंदव. 5:39 टाइम थियो आहे ऐं प्रोग्राम मां बिल्कुल लाइव ॿुधी रहियो. जी शहबाज़ साहब,
1: कॉग्निज़ेंस बाबर, असां वटि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डायरेक्ट कंप्लेंट जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे,
0: ठीकु आहे,
1: जेके अंडर सेक्शन 200 जे तहत इहा डायरेक्ट कंप्लेंट ईंदी आहे. असां कंहिं बि सेशन कोर्ट में असां इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट जी कंप्लेंट दाख़िल कंदा आहियूं अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ डिस्पोज़ेस्ड वेदर लॉफुल ओनर और द लॉफुल ऑक्यूपायर. सो जॾहिं उहा कंप्लेंट वेंदी आहे त सेशन जज उन कंप्लेंट ते नोटिस वठंदो आहे.
0: सही.
1: सो अंडर सेक्शन 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, डायरेक्ट कंप्लेंट इज सबमिटेड बिफोर द सेशन कोर्ट.
0: अच्छा, इन एक्ट में ट्रायल तरीक़ो आम सिविल केसिस खां मुख़्तलिफ़ आहे?
1: न, हिन में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो एप्लीकेशन हिते अप्लाई थो थिए पियो,
0: सॼो
1: सीआरपीसी, छोकि प्रोसीजर असांजो उहो एडॉप्ट थींदो न सॼो.
0: ठीकु आहे सर. सो हींअर असीं कॉलर जी तरफ़ हलूं था. फर्स्ट कॉलर मौजूदु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. अलहमदुल्ला अदा, केर था ॻाल्हायो? जी जी अदा, प्रोग्राम ॿुधो पिया, कहिड़ो सवाल पुछण चाहींदो? जी सॉरी अदा, मां सम्झियुसि कोन, ॿीहर ॿुधायो. जी जी, लीज़ ते, ठीकु आहे. शहबाज़ साहब, सम्झो तव्हां हिन जी ॻाल्हि.
2: हेलो
0: जी, रिपीट कंदा, लीज़ ते तव्हां चयो पिया ज़मीन तव्हां वटि आहे अॻिते. तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी शायदि शहबाज़ साहब सां, सर लीज़ ते प्रॉपर्टी
1: थोरो लीज़ ते वरिती वञे, ॿ धुरियूं पाण में.
0: जी जी जी,
1: त लीज़ समथिंग डिफरेंट आहे. लीज़ ते बि अगरि लीज़ जो बि अगरि असां कॉन्सेप्ट खणूं त लीज़ जो बि ईअं ई हूंदो आहे त कंहिंखे सिर्फ़ असां परमिट ॾींदा त कंहिं शइ खे यूटिलाइज़ करण जो. पोइ लीज़ ते बि अगरि इन वरिती आहे को हुनखे बेदख़ल करे थो पियो, उहो बि लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट में अचे थो.
0: अच्छा शहबाज़ साहब, हिन खां अलावा थोरो टॉपिक खां अलावा हिकिड़ो सवाल अचे पियो मुंहिंजे ज़हन में त अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो पिया त कुझु हाउसिंग स्कीम्स अहिड़ियूं आहिनि या कुझु प्रॉपर्टीज़ अहिड़ियूं आहिनि जो ॿिनि पार्टीज़ वटि रजिस्ट्रीज आहिनि, जंहिं वजह सां हुननि जा जेके आहिनि मतिलबु इलाही पुराणा जहिड़ा हलनि था पिया. इन खे कीअं पिया ॾिसो?
1: This is a total different case from the
0: illegal dispossession.
1: आहे त इशू सिविल प्रोसीजर कोड सॼे जा सॼा प्रोपर्टी सां रिलेटेड जेके बि इशूज़ हूंदा आहिनि, पार्टीशन ते हुजनि, डॉक्यूमेंटेशन ते हुजनि, कैंसिलेशन ते हुजनि, स्पेसिफिक रिलीफ एड जा हुजनि, मिसाल एग्रीमेंट सां रिलेटेड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट सां हुजनि, इहे सॼा सॼा जेके कॉन्ट्रेक्ट हूंदा आहिनि, इहे सॼा केसिस रिलेटेड सिविल प्रोसीजर कोड. हाणे असां छा कंदा आहियूं, हाणे लाज़मी आहे कंहिंखे केस में इन्वॉल्व करण जे लाइ कोई न कोई हिकिड़ी पार्टी को अहिड़ो रीज़न ॼाणाए छॾंदी आहे त हुनखे एम्बिट में खणी ईंदी आहे इलीगल डिस्पोज़िशन जे. छोकी हिन एक्ट जो सिर्फ़ पर्पज़ इहो हुयो त क्विकली रिलीफ ॾियो, जेतिरो थी सघे कंहिं बि माण्हू खे अगरि कंहिं बेदख़ल करे छॾियो आहे त हुनखे क्विकली रिलीफ़ कीअं ॾियूं त हुनखे वापसि हुन जी प्रोपर्टी में रीस्टोर कराए हुनखे पोज़ीशन वापसि ॾियारियूं। हाणे इन जे करे त ज़्यादातर माण्हू छा कंदा आहिनि, हेॾे मूव घणो कंदा आहिनि त इलीगल डिस्पोज़ीशन जे अंदरि हलिया ईंदा आहिनि त जीअं असांखे क्विकली रिलीफ़ मिली सघे। सो हिन जा बि पंहिंजा हिकिड़ा प्रोसीजर ऐं तरीक़ा आहिनि जेके हिकिड़ो सेशन जॾहिं अडॉप्ट कंदो आहे हुन खां पोइ वञी हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾींदो आहे, क्योंकि हे ॿ शयूं अलॻि अलॻि माना डिफरेंट तरीक़नि सां कमु कंदियूं।
0: सो कॉलर हिकिड़ो ॿियो मौजूदु आहे, लेट्स सी
1: प्लीज प्लीज।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बाबर भाई, अब्दुल जब्बार बंदरो कॉल को सलाह पर जिला फटर गंगर
0: जी जी अदा
2: ये असान जो तीसरा वहां ये सवाल है, अगर कोई गरीब मानु आ को गोठान आ वेठला सरकारी जमीन पे उन्हें के सदन का वेठला उन्हें के बेदखल करे तो उन्हें के बारे में तो जो कानून छाप करे
1: कची आबादी आहे। गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी ते वेठो
0: रेलवे जा प्लॉट।
1: मां प्रीवियस हिकिड़ो पाण टॉपिक कयोसीं त स्टेट इज़ अ मदर, ठीकु आहे न, स्टेट जो कमु आहे प्रोटेक्शन करणु, फूड प्रोवाइड करणु ऐं शेल्टर प्रोवाइड करणु। डिस्कस कयोसीं, सपोज़ हाणे माण्हू 40-40 सालनि खां वेठा आहिनि, 30-30 जनरली था ॻाल्हाइनि, 30-30 40-40 सालनि खां वेठा आहिनि, 25-25 सालनि खां वेठा आहिनि, अगरि उहो गवर्नमेंट जी बि प्रॉपर्टी ते वेठा आहिनि त गवर्नमेंट सभ खां पहिरियों हुनखे फैसिलिटेट करे। हाणे मिसाल हाणे ऑल ऑफ सडन अगरि गवर्नमेंट सॼा रिकॉर्ड खणी ईंदी, घरनि जा घर जेको आहे न छा चवंदा आहिनि ड्राए छॾंदी, अल्टीमेट नुक़सान आवाम खे ई थींदो। जॾहिं त स्टेट हूंदी आहे आवाम खे रिलीफ ॾियण जे लाइ, अगरि सपोज़ वेठा आहिनि सालनि जा साल वेठा आहिनि, वेठा त ग़लति तरीक़े सां, छोकी ओनरशिप आहे न, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जी आहे। पर मां हिते रिक्वेस्ट कंदुमि की अगरि ईअं बि अगरि को गवर्नमेंट स्टेप खणे थी पई, सभ खां पहिरियों हुनखे रिहेबिलिट करे, हिकिड़ो स्पेसिफिक जॻहियूं ॾे, हुन खां पोइ वञी करे हुन प्रॉपर्टी खे जहिड़े बि तरीक़े सां इस्तेमालु करे।
0: सही। ऐं सेकेंडली सर, तव्हां ॾिठो आहे हिते अहिड़ी प्रॉपर्टीज़ जेके न सेल परचेज़ बि थींदियूं आहिनि, पोइ अक्सर कुझु केसिस मूं अहिड़ा ॾिठा जो जीअं पार्टी इहो परचेस कयो त विद इन वन मंथ जेको आहे हुनखे गवर्नमेंट जेको आहे त हुनजी प्रॉपर्टी
1: अल्टीमेट ऑनर त गवर्नमेंट ई
0: आहे,
1: सिर्फ़ पोज़ीशन थी, हिते सिर्फ़ पोज़ीशन थी चेंज थिए। ठीकु
0: आहे,
1: डिमांड नोटिस वठी छॾींदा आहिनि, हुनखे रजिस्टर न कराईंदा आहिनि हिकिड़े डिमांड नोटिस ते जेको आहे न सेल ऐं परचेज जो। मूं वटि बि हिकिड़ो केस आयो हुयो त हिकिड़ो भाउ ॿिए भाउ जे मथां इहो ई केस करणु चाहे पियो, त मां हुनखे चयुमि त तव्हां क्लेम कीअं कंदो, तव्हां त कची आबादी थियो, छा तव्हां डिमांड नोटिस बि अवेलेबल आहे जेको शो करे त तव्हां रियल ओनर हो ऐं तव्हां गवर्नमेंट खां इहा शइ लीज़ ते वरिती आहे, उहा हुननि वटि न हुई। तव्हां केस कंदो, केस कंदो पहिरियों त गवर्नमेंट तव्हां खां ई पुछंदी त तव्हां कहिड़े कैपेसिटी में हिन
0: जॻह
1: इन में इहो आहे त अगरि सपोज़ को वठे बि थो त कोशिश करे डिमांड नोटिस ते या कोई बि कची आबादी स्कीम आहे हुन ते पाण खे रजिस्टर कराए छॾे।
0: All right, right.
1: बाद में गवर्नमेंट हुनखे कंपनसेट करे सघे
0: थी, रजिस्ट्री ज़रूरी आहे, रजिस्ट्री लाज़मी वारी जेकी आहे त परचेस करणु घुरिजे,
1: हुनमें प्रोटेक्शन हूंदी आहे न, बच बचाव थी वेंदो आहे न।
0: सो कॉलर मौजूद आहे, हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कयूं पिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी अदा, आवाज़ तव्हांजो घटि आहे, ॿीहर ॿुधायो। तव्हां सम्झो सर,
1: बाबर सभ खां पहिरियों सिग्नल जो ॾाढा इशू आहे। मां पर्सनली चवां थो, मां जेकी सिम्स यूज़ थो कयां पियो हुन में हिक या ॿ काल पहिरियों ड्रॉप थींदियूं आहिनि, पोइ ट्रीन ते सिग्नल ते इशू
0: ड्रॉप में
1: माज़रत ई करे सघूं था, हाणे सिग्नल ड्रॉप थी थिए, सम्झी नथा सघूं असां।
0: सो हिकिड़ो ॿियो कॉलर आहे, अस्सलाम वालेकुम।
2: अदा
0: केर था ॻाल्हायो, सवाल पुछो पंहिंजो। अगेन ड्रॉप थी चुकी आहे, लास्ट कॉलर शामिल करे असां टॉपिक जी तरफ़ अचूं पिया। सो लेट्स सी लाइन ते गॾु केर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अदा, केर था ॻाल्हायो भा? ओके, सवाल पुछो पंहिंजो।
2: पंज साल में जवाबु आहे,
1: हिकड़ो बाबर कम कयो इन्हनि खे तव्हां मुंहिंजो नंबर ॾेई छॾिजो सालिया पट सां ई तालुक़ु रखनि था भई भली मूंसां इंडिविजुअल लेवल ते ॻाल्हाए छॾनि थी सघे थो मां हिननि जो प्रॉब्लम हिन जो सोल्यूशन हिननि खे ॾेई छॾां अदा मां नंबर रिपीट करे छॾंदुमि लास्ट में तव्हां जेको आहे न उहो नोट करे छॾिजो तव्हां पोइ मूंसां बाद में ॻाल्हाए सघो था पिया
0: असल
1: में सवाल हिते ई ड्रॉप थो थिए हिते
0: शेवा साहब टॉपिक जी तरफ़ अचूं पिया सेक्शन 5 इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर तहत आहे ऐं हिन सेक्शन तहत जेको आहे त इन्वेस्टिगेशन थिए पई बुनियादी पर्पज़ छा आहे हिन सेक्शन तहत इन्वेस्टिगेशन जो
1: कॉग्निजंस ते अचूं सेक्शन 4 में कॉग्निजंस सां पुछियो जज साहब पहिरियों त कोर्ट कहिड़ी में वेंदो कोर्ट सेशन कोर्ट जेकी बि केसिस वेंदा आहिनि डायरेक्ट कंप्लेन जा इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट में जेकी जुरिसडिक्शन आहे उहा सेशन कोर्ट वटि आहे सेशन कोर्ट छा कंदी कॉग्निजंस वठण खां पोइ ॿ कम कंदी पहिरों कंसर्न SHO हद जे SHO खे डायरेक्शन ॾींदी त रिपोर्ट्स ठाहे खणी अचो जेकी कंप्लेंट थी आहे वाकई जाइज़ आहे या न आहे हाणे पुलिस छा कंदी पुलिस कंप्लेननि खे घुराईंदी पुलिस कंप्लेनर जे विटनेसिस खे घुराईंदी पुलिस हुन खां जेके लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ आहिनि उहे घुरंदी प्लस में इंसिडेंट जिते थियो आहे जंहिं जॻह ते पुलिस वञी करे उते सॼी जी सॼी इंसिडेंट रिपोर्ट लिखी करे विद इन 15 ॾींहनि जे अंदरि कंसर्न हद जे जेको बि जज साहिब आहे उन्हनि वटि खणी वेंदी ॿियो जज साहिब छा कमु कंदा ऑनरेबल सेशन कोर्ट छा कमु कंदी पंहिंजे ई हद जे इंक्वायरी कंडक्ट करण जे लाइ रेवेन्यू ऑफिसर खे मतिलबु रजिस्ट्रार खे मुख़्तियारकार खे असिस्टेंट कमिश्नर खे डायरेक्शन ॾींदी त तव्हां इंक्वायरी कंडक्ट कयो जेकी हीअ प्रॉपर्टी क्लेम करनि था पिया छा इहा प्रॉपर्टी हिते सिचुएटेड आहे छा इहे हुन जा मालिक आहिनि ॿियो पंहिंजे लेवल ते पंहिंजी कैपेसिटी ते इंक्वायरी कंडक्ट करण जे लाइ कोई बि हिकिड़ो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करे सघे थी जेको इंक्वायरी रिपोर्ट ठाहे करे विद इन 50 डेज़ में सेशन जज खे सबमिट कराईंदो सो इन्वेस्टिगेशन हिन जो पर्पज़ सिर्फ़ इहो आहे त जेकी डायरेक्ट कंप्लेंट आई आहे असां वटि इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट जी छा हुन जी फिटिंग फुटिंग आहे या न आहे छा हुन में जेके फैक्ट्स ऐं फिगर ॾेखारिया विया आहिनि छा उहे वाकई रिलायबल आहिनि जंहिंजे मथां कॉग्निजंस वठी सघिजे ठीकु ऐं उनखां पोइ इन्वेस्टिगेशन जीअं रिपोर्ट पेश थी वेंदी त जज साहिब छा कंदा डे टू डे हाणे हे इलीगल डिस्पोज़िशन पूरे हुन में लॉ में वाहिद हिकिड़ो एक्ट आहे जंहिंमें कोई बि एजरमेंट न आहे डे टू डे माना जीअं रिपोर्ट पेश थी वई इंक्वायरी रिपोर्ट ऐं पुलिस जी रिपोर्ट जीअं अची वई प्रूफ थी वियो प्राइमा फेशिया अची वियो ऐं जेको आहे न मेलाफाइड ज़ाहिर थी वियो सपोज़ त जज हुन ते एक्शन खणंदो ऐं हिन ते छा कंदो डे टू डे कार्रवाई मतिलबु ट्रायल शुरू करे छॾंदो कॉपी सप्लाई थी वेंदियूं अक्यूज पर्सन्स अची वेंदा हुननि जा पंहिंजो छा चीफ रिकॉर्ड थींदो ऐं प्लस में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन शुरू थी वेंदी सॼी ठीकु आहे कंहिंजी कंप्लेनर जी जंहिं डायरेक्ट कंप्लेन दाख़िल कई आहे हुनजो चीफ ऐं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन शुरू थी वेंदो एजरमेंट न आहे ॾियणी विद इन 60 डेज में तव्हांखे जेको आहे न पूरो जो पूरो ट्रायल कंडक्ट करणो आहे अगरि गुंजाइश पइजी थी वञे एजरमेंट ॾियण जी चवनि था त 7 डेज खां माना लिखियल आहे लॉ में लिखियल आहे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ 7 ॾींहं बाक़ी अदर गुंजाइश न उहो बि कॾहिं रेयर केसिस में हाणे रेयर केस कुझु बि थी सघे थो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसिस असां लफ़्ज़ यूज़ कंदा आहियूं उन खां अलावा बाक़ी विद इन 60 डेज़ में तव्हांखे सॼो जो सॼो जेको ट्रायल आहे उहो कंक्लूड करणो आहे अगरि कंप्लेन इन मेलाफाइड अगरि अक्यूज़ जो साबित थी थो वञे त हिननि खे डिस्पोज़ कयो आहे इलीगल तरीक़े सां त जीअं मां तव्हांखे ॿुधायमि त 10 सालनि ताईं अप टू 10 सालनि ताईं सज़ा आहे न त डिपेंड अपॉन द जज खे उहो 3 साल जी सज़ा ॾे 4 साल जी ॾे हुननि जे मथां आहे प्लस में फाइन ऐं मथां कंपनसेशन अंडर सेक्शन 546 A पर प्रोवाइडेड दैट हिकड़ी शइ हिन में हिकड़ी ॿी बि आहे अगरि कंप्लेनेंट साबित न करे सघियो सभु कुझु कूड़ो थी वियो ऐं प्रूव न करे सघियो त हिननि मूंखे डिस्पोज़ कयो आहे छो की ईअं न आहे त सिर्फ़ अक्यूज़ पर्सन जे लाइ ई इलीगल डिस्पोज़िशन आहे माण्हू कॾहिं कंहिंखे फसाइण जे लाइ बि दाख़िल करे छॾंदा आहिनि केस हाणे इन सूरत में पूरी जी पूरी कंप्लेंट फॉल्स निकिती फ्रिवोलस निकिती ठीकु आहे हाणे जज छा कंदो उहो सॼो जो सॼो जेको बि फाइन आहे हिते त छा हुयो सज़ा बि हुई हाणे कंपनसेशन बि हाणे जज हुन जे मथां पेनल्टी हणंदो कंप्लेन जे मथां 5 लख तूं हाणे अक्यूज़ पर्सन खे भराए ॾींदे अच्छा, तू अच्छा, खिलाफ अच्छा, गलत केस दाखिल कियो आहे। चवण चाहिंदुमि इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट जे थे त अगरि तव्हां अचो था पिया त कंप्लेनेंट खे इहा ज़रूर ख़बर हुजे अगरि मां साबित न करे सघियुमि त मुंहिंजे मथां 5 लख जो फाइन लॻी सघे थो पियो, 5 लख जी पेनल्टी लॻी सघे थी जेकी मूंखे अक्यूज़ पर्सन खे ॾियणी हूंदी।
0: साबित करण लाइ सिर्फ़ एविडेंसिस
1: मां छा चयुमि, हर लाइ ॿिन्हिनि जे लाइ हूंदो, सिर्फ़ हिकिड़े जे लाइ न हूंदो आहे, ॿिन्हिनि जे लाइ हूंदो आहे।
0: सर, सेक्शन 6 पावर टू अटैच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अटैच करण जो मक़सद हिन ते थोरो,
1: हाणे इहो इंट्रेस्टिंग आहे, प्रॉपर्टी अटैच केरु कंदो? हिकड़ी प्रॉपर्टी आहे खाली पई आहे सालनि खां वठी करे, नो बॉडी इज़ क्लेमिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी, ठीकु आहे न? ऑल ऑफ सडन ॿ धोरियूं अची वियूं, साईं हे त असांजी आहे, हिकिड़े चयो हे मुंहिंजी आहे। हाणे सिविल लिटिगेशन में वञण नथा चाहिनि, हाणे हुननि हिकिड़ो केस दाख़िल करे छॾियो, साईं हे प्रॉपर्टी असांजी आहे, हिननि छा कयो आहे, असां हिते कमकार मरमत जेकी बि मरमत करायूं पिया, कंस्ट्रक्शन जो कमु करायूं पिया, असां बीठा हुयासीं अंडर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, हे 4 माण्हू आया असांखे ॿाहिरि फिटी करे छॾियनि, असांजो सामान कढी करे असांजा मजदूरनि खे असांखे असांजो कंस्ट्रक्शन सामान ॿाहिरि फिटी करे छॾियनि, ठीकु आहे, या ताला भञी करे अंदरि दाख़िल थी विया, माना क्रिमिनल ट्रेस पास असांजे एब्सेंस में क्रिमिनल ट्रेस पास कई अथनि, हाणे इलीगल डिस्पोजिशन जो केस दाख़िल करे छॾियो। हाणे जज साहब, असां प्रीवियस वञूं था इन्वेस्टिगेशन ते, इंक्वायरी ते, सेक्शन 5 में अगरि असां ईंदासीं ॿीहर, हाणे जॾहिं पुलिस जी रिपोर्ट ऐं इंक्वायरी रिपोर्ट जॾहिं ॿई पेश अची वियूं साम्हूं, ऐं इहो डिक्लेयर थी वियो जज साहब खे, जॾहिं हुन ऑन रिकॉर्ड जेको अवेलेबल पियो आहे, मटीरियल ऑन रिकॉर्ड, हिन में हिकिड़ो लफ़्ज़ प्राइमा फिशाए, मां हिन करे लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, हुन जो हिसो आहे हिन जे ला में, हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल
0: आहे,
1: प्राइमा फिशाए जो मतिलबु आहे ऑन द फेस ऑफ। हाणे जज साहब ऑन रिकॉर्ड इहो ॾिसी वरितो त प्रॉपर्टी न हिन जी आहे, न ए जी आहे, न बी जी आहे, हे प्रॉपर्टी कंहिं 3 माण्हू जी आहे, या हे
0: पुटनि
1: प्रॉपर्टी स्टिल पी जे नाले ते है, ॿ क्लेम था, हाणे हिननि हिक ॿिए जे मथां कूड़ा केस करे छॾियनि। हाणे जज साहिब छा कंदो, ऑनरेबल सेशन जज साहिब छा कंदा, हिन प्रॉपर्टी खे जुडिशियल कस्टडी में वठी छॾंदा, हिन खे पंहिंजे एडमिनिस्ट्रेशन जे अंदरि रखंदा, जेसि ताईं केस ख़तम न थींदो तेसि ताईं इहा कोर्ट जे अंदर या कोर्ट जे कंट्रोल में रहंदी। अगरि सपोज इहा ई प्रॉपर्टी अगरि को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आहे, जीअं हाणे अंबनि जो सीज़न आहे, अंब लॻा पिया आहिनि, ऑल ऑफ सडन त हाणे प्रॉपर्टी हुनखे सीज़ करे छॾियो, ठीकु आहे, तहवील में वठी छॾियो, हाणे अगरि नेचुरल डिके जो शिकार थींदी, छा अंबनि अगरि असां न कढंदासीं या कारकू न कढंदासीं, ख़तम थी वेंदियूं, पोइ छा कंदा, उहे सॼा लाहे करे हुनजो जेको बि विकिणे करे मार्केट में जेको बि पैसो, उहो बि पंहिंजी तहवील में रखंदा, न अंब खणी सघजो, न कारकू खणी, हा जीअं केस ख़तम थी वेंदो, उनखे जेको बि हुन मां पिक्यूनरी गेन थींदो, उहो जज साहिब हुनखे वापसि हैंड ओवर करे छॾा, प्रॉपर्टी तव्हांजी उन सेक्शन जे तहत, इहो जेको आहे
0: पावर टू
1: कोर्ट पंहिंजे तहवील में वठी छॾंदी।
0: वक़्तु मुख़्तसिर आहे, पाण वटि 2-3 सेक्शन अञा रहिजी विया आहिनि, मां सम्झा पियो त असांखे डायरेक्ट हाणे सेक्शन 9 ते अचणु घुर्जे, एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट ते, छाकाणि त ओनली 3 मिनट
1: सेक्शन 9 खां अॻ में, सेक्शन 9 त सिर्फ़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एडॉप्ट, प्रोसीजर असां वटि हाणे हिन में जेको ट्रायल आहे उहो 265C खां शुरू थो थिए, 265B खां अगरि चओ, जेको सप्लाईज़ ऑफ कॉपी खां वठी शुरू थिए थो वञी करे 265K ताईं, इहो पूरो सेक्शन या ट्रायल हिन में जेको आहे न लागू थिए थो पियो।
0: सेक्शन
1: 7 इज़ इम्पोर्टेंट, सेक्शन 7 इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 6 ऐं सेक्शन 8।
0: हाणे
1: मेन असांजो टॉपिक इहो हुयो जेके इलीगल डिस्पोज़िशन खे वाइंड अप करनि था। सेक्शन 7 छा, इंटीरियम रिलीफ, कंहिं बि माण्हूअ खे अगरि डिस्पोज़ कयो वियो आहे, हाणे जज ऑन रिकॉर्ड ॾिसे थो जेको बि माण्हू आहे जेके डिस्पोज़ कयो वियो आहे, हाणे टेम्परेरी रिलीफ ते, इंटीरियम रिलीफ ते जज साहिब हुन खे छा कंदा, ऑर्डर करे उन साॻई माण्हूअ खे रीस्टोर करे छॾंदा, उनखे पंहिंजी जॻह में वापसि ऑर्डर करे त बाबा तव्हां हिन माण्हूअ खे हाली पंहिंजी जॻह में रहण ॾियो, जेसिताईं केस कंप्लीटली डिसाइडिड थिए तेसिताईं हिन माण्हूअ खे हितां जॻह मां न कढो, ठीकु। अगरि मिसाल को ऑर्डर खे नथो तस्लीम करे, ऑर्डर खे तस्लीम नथो करे, त ऑनरेबल रीज़नेबल जस्टिफिकेशन सां या रीज़नेबल वे सां जे पुलिस जो तरीक़ो वठी करे उन साॻई माण्हू खे उन प्रॉपर्टी में वापसि रीस्टोर कराईंदा। सपोज़ हिकिड़ी फैमिली हलो, हिनखे असां हीअं था सम्झूं, जंहिं रेंट जा केसिस हूंदा आहिनि, हिकिड़े माण्हू जो रेंट कम्पलीट थी वियो आहे, एग्रीमेंट कम्पलीट थी वियो आहे, ऐं हुनखे 60 ॾींहं जो नोटिस मिली चुको आहे, पर स्टिल इज़ नॉट वेक्टिंग द प्रॉपर्टी। हाणे हुनखे चलो ठीकु आहे, कहिड़े बि तरीक़े सां ॿाहिरि कढी छॾियो, हाणे हे क्लेम थो करे, साईं मुंहिंजो अञा वायदो पूरो ही न थियो आहे, एग्रीमेंट पूरो न थियो आहे, हिननि मूंखे ज़बरदस्ती कढियो आहे। छोकी हे जेको कानून आहे लैंड ग्रेबर ताईं बि महदूद न आहे न, हिन में फोर्सफुल इवेक्शन बि आहे।
0: अच्छा, इन सिचुएशन में पोइ जज साहब जेको
1: जज साहब चवंदो हाल ई तव्हां हिनखे रिस्टोर कयो, हाल ई हिनखे पंहिंजे, छोकी लाज़मी हुन जा ॿार आहिनि, बच्चा आहिनि, जो सामान काॾे खणी वेंदो, हाल ई तव्हां हिनखे वापसि पंहिंजो रिस्टोर कयो। अगरि साबित थिए थो पियो त हिननि तव्हांखे जबरन कढियो आहे त हुनखे पेनल्टी लॻंदी, अदरवाइज़ अगरि हुनजो जाइज़ हूंदो, सपोज जेको अक्यूज पर्सन आहे जंहिंजे लाइ कंप्लेन ऐं केस दाख़िल कयो आहे, जज साहब हुनखे एज़ पर डायरेक्शन हुनखे पंहिंजी प्रॉपर्टी तो छा चवंदा आहिनि ऑर्डर करे हुनखे डायरेक्शन ॾींदा, बाबा तव्हां पंहिंजी प्रॉपर्टी खाली कयो ऐं जेको मेन माण्हू हुयो हुनखे हिन केस मां आज़ाद करे,
0: पेनल्टी बि लॻण वारी,
1: पेनल्टी लॻंदी अगरि साबित न करे
0: सघे। डिसाइड थियण में केतिरो टाइम पियो लॻे?
1: 60 डेज़। बाबा लॉ चए थो यू हैव टू डिसाइड द इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट या द केस इज़ रिलेटेड टू इलीगल डिस्पोजिशन विद इन 60 डेज़।
0: ओके, 2 मंथ्स।
1: ॿी ॻाल्हि मां चई, वाहिद लॉ आहे जंहिंमें गुंजाइश ई न आहे एजरमेंट जी।
0: ओके,
1: अगरि एजरमेंट ॾियणी आहे त रेयरेस्ट केस, हिकिड़ी रेयर केस न, रेयरेस्ट केस में तव्हांखे एजरमेंट ॾियणी आहे, उहो बि अन माना अहिड़ो रीज़न ॾेई करे त जेको न टालजे सघजे, जे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसिस हुजनि तॾहिं वञी करे, पर डे घणा? 7 ॾींहं।
0: अच्छा, 7 ॾींहं
1: सिर्फ़ 7 ॾींहनि जी एजरमेंट ॾिनी, उनखां पोइ सिर्फ़ 7 ॾींहं एजरमेंट सिर्फ़ 7 ॾींहं ॾियणी आहे, उनखां पोइ वरी केस डे टू डे जे बेसिस ते हलाइणो आहे।
0: ओके, ऐं विद इन 60 डेज़ जेको आहे त इहो केस जेको आहे
1: जी, हाणे

0: सेक्शन अठ जी अचूं था वंस प्रूफ थी हाणे इंटीरियम रिलीफ मिली वियो इंटीरियम रिलीफ छा थियो इवेक्शन पोज़ीशन असां जेकी इवेक्शन थी इंटीरियम रिलीफ ॾेई असां रीस्टोर
1: कराए
0: जीअं केस साबित थो थी वञे अगेंस्ट अक्यूज पर्सन त हिननि असांखे इलीगल डिस्पोज़ तरीक़े सां कढियो आहे त अक्यूज़ खे त सज़ा मिलंदी पेनल्टी अलॻि लॻंदी फाइन अलॻि लॻंदो कंपनसेशन अलॻि भरंदो अगरि कंप्लेनेंट साबित न करे सघियो त कंप्लेनेंट खे 5 लख भरणा पवंदा
1: कंप्लेनेंट कहिड़ी बि कंडीशन में
0: लॉ 5 लख ॾियणा आहिनि हुनखे
1: हुन
0: में लॉ में इहो वाज़े थियल आहे त पेनल्टी हुनखे जेकी ॾियणी आहे 5 लख त हिनखे इंजरी ॾियणी आई आहे त लाज़मी आहे तव्हां हुनजे ख़िलाफ़ हिकिड़ो ग़लति फॉल्स ऐं फेरविलिस वेक्सीशियस केस तव्हां दाख़िल कयो आहे हुनजे ख़िलाफ़ तव्हां हुनजी इज़त खे टार्निश कयो
1: आहे
0: ठीकु आहे छोकी हुनखे लैंड माफ़िया लैंड ग्रेबर जो तव्हां टेक था हणो कयो माण्हूअ खे देट इज़ द रीज़न की हुनजी इंजरी 5 लख सां बि कंपनसेट न थींदी छोकी इज़त वॾी शइ हूंदी बसि इहो सिर्फ़ सबक सिखण
1: हाणे
0: ॾिसो न हाणे इहे सेक्शन 8 ई रिलाय हुन ते करे थो जीअं हाणे केस थी वियो त हाणे जंहिंजी प्रॉपर्टी जंहिंजे नाले ते हूंदी it will be restored to that person.
1: All right. Sir, to conclude the program, topic agar asa conclude kyun, aakhir mein ekdo sawal aaye, jeko mukhe screen te bhi aaye hua, ek na 3-4 janan mokliyo jeko musalsal mare sando pyo ra, ta je kare yo agar illegal dispossess the pai ke property te, ta u jeko maanu aa unne ki kedo legal step vathan gurje, fauri taur te.
0: Budhayo sin, sab ka pehro police je complaint dakhil kare. एसएसपी कंप्लेंट सेल ते वञे ऑनलाइन कंप्लेंट दाख़िल करे छॾियो जी रिसीविंग वठे वरी कंसर्न हद जे एसएचओ
1: ऑनलाइन कंप्लेंट बि करे सघे थो
0: ऑनलाइन कंप्लेंट करे सघे थो प्लस में छो 24 आवर्स में वरी हुन ते अमल बि त थियणो आहे न ठीकु आहे उन खां पोइ कंसर्न हद जे एसएचओ ॾे वञी करे रिटन में एप्लीकेशन ॾेई सघे थो भई मूंसां हे माण्हुनि ज़ुल्म करे छॾियो आहे मूंखे घर मां बेदख़ल करे मुंहिंजा ॿार रोड ते आहिनि मां काॾे वञा सपोज़ अगरि उहो रियल बेसिस ते आहे ठीकु आहे देन उहा कंप्लेंट खणी करे हे सेशन कोर्ट ईंदा जेके असां डायरेक्ट कंप्लेंट चवंदा आहियूं पंहिंजे कंहिं बि काउंसिल जे थ्रू उहो डायरेक्ट कंप्लेंट दाख़िल करे उन्हनि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो ट्रायल इनिशिएट कराए सघनि था पिया
1: ऑल राइट सो शहबाज़ साहब
0: हिकिड़ो ॿियो कंक्लूड कंदुमि त 8A में हिन जी अपील आहे अगरि सपोज़ को माण्हू समुझे थो मूंखे ग़लति तरीक़े सां कढियो वियो आहे ऐं मुंहिंजे लाइ ख़िलाफ़ जेको आहे न डिसीशन आयो आहे मूंखे कन्वेंशन लॻी आहे कन्वेक्शन लॻी आहे मूंखे सज़ा लॻी आहे अगरि कोई कंप्लेनेंट समुझे थो जेके अक्यूज पर्सन उहे ग़लति तरीक़े सां अक्यूट थी विया आहिनि मुंहिंजो केस जाइज़ हुयो ग़लति तरीक़े सां न चइजे माना कहिड़े बि तरीक़े सां ए बी सी डी या लेक ऑफ एविडेंस जे करे मुंहिंजो जेको अक्यूज पर्सन आहे उहो ग़लति तरीक़े सां या वरी उहो लफ़्ज़ छोकी असां हैबिट आदि थी विया लफ़्ज़ जा त माना उहो कहिड़े बि वे सां लेक ऑफ एविडेंस जे करे उहो अक्यूट थी वियो आहे त सेक्शन 8A असांखे अपील जो मौक़ो थो ॾिए त विद इन 30 डेज़ में अगरि कंहिंखे कन्वेक्शन लॻी आहे त 30 ॾींहनि में पंहिंजो अपील दाख़िल करे हाई कोर्ट में अगरि को अक्यूट थी वियो आहे त कंप्लेनेंट खे 30 ॾींहनि में जेको आहे हुनजे ख़िलाफ़ रिवीजन दाख़िल करणी पवंदी सो इहो असांखे जेको आहे न लॉ पूरो जो पूरो प्रोसीजर ॾिए थो पियो त इलीगल इन स्पेसिफिक केसिस खे कीअं डील कजे अपार्ट फ्रॉम द सिविल प्रोसीजर कोड ऐं जेको आहे न में जेके रेगुलर मैजिस्ट्रेट ट्रायल आहिनि सेशन ट्रायल खां हटी करे इन जे लाइ इहो लॉ क्रिएट कयो वियो
1: ऐं सर इन शॉर्ट लास्ट में वरी तव्हां रिवाइज़ इहो असांखे ॿुधाईंदा त सज़ा 10 सालनि ताईं थी सघे थी
0: एक्सटेंडिड
1: आहे
0: इट इज़ एक्सटेंडिड इंटेंसिटी डिपेंड करे थो केतिरी केतिरो माना हुनजी इंटेंसिटी आहे क्राइम जी छोकी ॾिसो न जेतिरी वधीक इंटेंसिटी सज़ा ओतिरी वधीक डिपेंड ईअं न जज 3 साल बि सज़ा ॾेई सघे थो 5 साल बि ॾेई सघे थो 7 बि ॾेई सघे एक्सटेंडिड 10 ईयर्स
1: नथो करे सघे अगरि प्रूफ त हुन ते 5 लख रुपया
0: 5 लख पेनल्टी आहे हुन ते सज़ा लॻंदी हुनखे लॻंदी 544A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
1: ऑल राइट सो लिसन्स प्रोग्राम जो वक़्त बि पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो अॼु जो असांजो टॉपिक इलीगल डिस्पोज़िशन जिते शहबाज़ साहब सुठे तरीक़े सां
0: कोशिश कई हूंदी पंहिंजे जेके न सुठे खां सुठो ब्रीफ कयो सुठे खां सुठो असांखे गाइड कयो हुजे
1: असांखे इंफॉर्मेशन ॾिनी उम्मीद आहे अॼु जो असांजो प्रोग्राम तव्हांजे लाइ तमामु घणो इंफॉर्मेटिव थियो हूंदो ऐं गॾो गॾु वधीक तव्हांखे लीगल कंसल्टेशन अगरि घुरिजे शहबाज़ साहब खां त तव्हां हुनजो नंबर नोट करे सघो था रिक्वेस्ट कंदुसि मां शहबाज़ साहब खे त नंबर ॾियणु चाहींदुमि
0: महिरबानी ऐं मां फीडबैक जो बि वेट कंदुमि
1: जी
0: फीडबैक असांजे लाइ नेसेसरी आहे इम्पोर्टेंट आहे छोकी फीडबैक असांखे मोटिवेशन ॾींदो आहे अञा पंहिंजे पाण खे फाइन खां फाइन करण जो
1: बिल्कुलु ईअं
0: ठीकु आहे त मां मोटिवेशन पंहिंजो फीडबैक जो बि वेट कंदुमि ऐं बाबर थैंक यू वेरी मच नंबर लाइ चयो मूंखे अगरि कंहिंखे ज़रूरत हुजे मूंसां कॉन्टेक्ट करे सघनि था 0308-12-44-306 रिपीटिंग वंस अगेन 0308-12-44-306
1: सो लिसनर्स प्रोग्राम जे वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. नेक्स्ट प्रोग्राम में वरी नए मौजू सां गॾु अव्हां सां मुलाक़ात थींदी. तेसीं ताईं अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर. सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज.
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए DFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन.
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786.
5: जी हा 3135525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़.

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: मुर्गी मुहागी, मच्छी मुहागी, ताजू सब्जियों खाओ, सेहत बनायो, आओ सब्जी वालों।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह है, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज दे इट इज नेवर टू लेट, आए बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
2: वजीर आजम इकबर बीहर अपोजिशन के मिसाक मैशत मिसाक जमहूरियत गालन की दावत दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम जो चवण हो तो सियासत नजरियो सभी पैंजो है पर पाकिस्तान आए तो सब आयु असाजा सब भायर आन को भी जेड़ो ना है। पेरी भी अपोजिशन लीडर की हैसियत में मिसाक जमहूरियत मिसाक मैशत लाय चयो हो पर मुझी खलूस से बदल आछ के रद्द कयो वयो। हाने भी दावत दिया तो अचो वेहो अगते वधो चैनी सूबन की एक जेतरी तरक्की मुझो मकसद है। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क की अमुन लाए डी रात कम कर रहा है। संदन खिदमतुन ए कुर्बानिन जो एतराफ़ ए एहतराम थियण घुर्जे।

अपोजिशन जी बि हुकूमत खे गॾिजी मामलनि खे अॻिते वधाइण जी आछ। क़ौमी असेंबली में बजेट ते ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान अचकज़ई जो चवणो हो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघिजे थो। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिकु मुआदो करे त जीअं सियासी जमायतूं हिक ॿिए जूं टंगू न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी आहे, अवां सूबनि खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानीअ ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिकु ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझु न थींदो। पीटीआई बानीअ सां मुलाक़ात थींदे छा थींदो थी।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान अमेरिका अमन मुआहिदो 24 कलाकनि में फाइनल थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे जा नुक़्ता 24 कलाकनि में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे लाइ अॻु खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुआहिदे डिजिटल सजन लाइ तयारियूं करे पियो। पूरो यकीन आहे त मुआहिदो ख़िते में जटादार अमन जो मज़बूत बुनियाद बणिजंदो।

ईरान अमरीका सां शुरूआती मुआदे ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राखची जो चवण आहे त अमरीका सां ॾींहं ॿिन में मुआदो थी सघे थो। मुआदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशह जीअं आबनाए हुरमस ते लटकंदी रहंदी। ॿिन सुफ़नि ते ॿधल मफ़ामती यादाश्त आहे जंहिं ते ॿिन महीननि ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। आबनाए हुरमस जो इंतज़ाम माज़ीअ खां मुख़्तलिफ़ हूंदो, जंहिं बाबति तहरान जो फ़ैसिलो हतमी आहे।

0: सूबन पारां मर्कज़ी मदद करण ते थोरायता आहियूं। इहा सहूलियत ईंदड़ 3 सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाणे वारे वज़ीर जो चवण हो त बजट में 70 अरब रुपियनि जी वाधू सब्सिडी ऐं पघारदार तबिके खे रिलीफ ॾिनो आहे। ज़रई मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी लागू कई आहे। तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया आहिनि। वफ़ाक़ी बजट पघारदार तबिके सनअतकारनि ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वारे ममलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी जो चवण हो त समूरनि शोबनि तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीअ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़नि जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो। हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारियुनि एक्सपोर्टर ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतुनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: जिंदगी।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
2: में फाइनल थी वेंदा ईरान अमेरिका अमन मुआहदे लाइ अग खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमेरिका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुआहदे ते डिजिटल सयुनि लाइ तयारियूं करे वरितियूं आहिनि। पूरो यकीन आहे त मुआहिदो ख़िते में जटादार अमन जो मज़बूत बुनियाद बणजंदो। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी जो चवण हो त ईरान अमेरिका मुआहदे ते डिजिटली सयुनि वारी तक़रीब सुभाणे थींदी। अहम अगभराई ख़िते जी जटादार अमुन लाइ मददगार साबित थींदी। ईरान ऐं अमरीका विच में मुआहिदे ते सयूं सुभाणे न पियूं थियनि, पर ईंदड़ ॾींहनि में मुआहिदे ते सयुनि वारो इम्कान रद्द नथो करे सघिजे। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो बयान। इस्माइल बकाई जो चवण हो त मफ़ामती यादाश्त नामे ते सही लाइ दुरुस्त वक़्त जो इंतज़ार करणु घुर्जे। जंग जे ख़ात्मे ते ध्यानु ॾियण वारी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ते अमल कयो पियो वञे। एटमी मामले ते ॻाल्हियूं न थियण वारे मरहले बाबति फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मुआहिदे ते सही लाइ दुरुस्त वक़्त जो इंतज़ार करणु घुर्जे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां कतरी हम मनसब शेख तमीम बिन हमद अल सानिया जो फोन ते राब्तो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे अमन कोशिशुनि जी हिमायत ते कतरी हम मनसब जा थोरा मञिया। वज़ीर आज़म आफ़िस मूजिब कतरी अमीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खे भेटा पेश कई। कतरी वज़ीर आज़म जो चवणु हो त सफ़ारती कोशिशुनि खे अॻिते वधाइण में शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल अहम किरदार अदा कयो। उमेद त अहिड़नि क़दमनि सां जटादार अमुन क़ाइम थींदो। वज़ीर आज़म जो वधीक चवणु हो त लाॻापियल धुरनि विच में जल्द अमुन मुआहिदो बि थींदो।

सूबनि पारां मर्कज़ी मदद करण ते थोरायता आहियूं। इहा सहूलियत ईंदड़ टिनि सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तर्फ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाणे वारे वज़ीर जो वधीक चवणो हो त बजट में 70 अरब रुपियनि जी वाधू सब्सिडी ऐं पघारदार तबिके खे रिलीफ ॾिनो आहे। ज़री मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी ख़तम कई। तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया आहिनि।

वफाकी बजट पगारदार तबके सनतकारन एक्सपोर्टर्स लाए आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाने वारे मुमलकती वजीर बिलाल अज़र कयानी जो चवण हो तो समूरन शोबन तां बार घटाने की कोशिश कई आहे। ये बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़ जी बजट आहे। घट पगार खणंदड़न तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ डि॒नो आहे। वापारन एक्सपोर्टर ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो वियो आहे। बजट सां सनतुनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई। हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ईरान अमरीका अमन मुआहिदो 24 कलाकन में फाइनल थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चवण हो त ईरान अमरीका अमन मुआहिदे जा नुक़्ता 24 कलाकन में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे लाइ अॻ खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुआहिदे ते डिजिटल सयुनि लाइ तयारियूं करे वरितियूं आहिनि। पूरो यकीन आहे त मुआहिदो खिते में जटादार अमन जो बुनियादु विझंदो। वज़ीर आज़म जो ट्वीट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प रीट्वीट करे छॾियो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी जो चवण हो त ईरान अमरीका मुआहिदे ते डिजिटली सयुनि वारी तक़रीब सुभाणे थींदी।
2: सयूं सुभाणे न पियूं थियनि, पर ईंदड़ ॾींहं में मुआहिदे ते सयूं वारो इम्कान रद्द नथो करे सघिजे। ईरान जे परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल पकाई जो बयान। इस्माइल पकाई चयो आहे त मफ़ामती याददाश्त नामे ते सही लाइ दुरुस्त वक़्त जो इंतज़ार करणु घुर्जे। जंग जे ख़ात्मे ते ध्यानु ॾियण वारे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ते अमल कयो पियो वञे। फ़ैसिलो कयो वियो आहे हाणे ईरान जे एटमी मामले ते ॻाल्हियूं न थींदियूं। मुआहिदे लाइ सही वक़्त जो इंतज़ार करणु घुर्जे।

0: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
1: White Ace Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: FM 88.5।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। बी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: 会，不会，不会。
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
1: सुनते रहो GFM 90.4